शुभ प्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रखे हैं। प्रस्तुत है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, प्रातःकाल का समय है, आइए हम कुछ क्षण बिताते हैं भगवान के चरणों में। प्रभु की आराधना से मन को न केवल शांति मिलेगी बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं अरुण मोहन के स्वर में ये भजन और प्रभु की चरण वंदना की ऐसी आदत अब हमारी बन गई है कि अब उनके बिना एक पल एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता।

श्रोताओं, जगत के पालनहार प्रभु के जब स्मरण में चलते हैं तो सब कुछ छोड़ देने को मन करता है। इसीलिए कहते हैं कि आप ही मेरे श्रवण हो, आप ही मेरी रसना हो, क्या कहूँ, आप मेरे सर्वस्व हो। छाया गांगुली के स्वर में सुनिए ये भजन।

भक्ति संगीत का ही कार्यक्रम वंदना आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं भाई हरजिंदर सिंह के स्वर में ये शब्द। हे गुरुदेव,

अजीज अहमद वारिस और साथियों के स्वर में आइए सुनते हैं ये नात। दुनिया में आकर मोहब्बत से मिलकर रहना भी इबादत है, चलो जिंदगी अल्लाह के नाम को जपते हुए गुजारें।

भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में अनुराधा पटवाल और साथियों के स्वर में ये आरती। आराधना करते हैं माँ सरस्वती की और प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हमें ज्ञान और विवेक प्रदान करें, मन की कलुषिता को हर कर हम सबको उज्जवल भविष्य भी दें और ऐसी बुद्धि निर्मल दें जिससे कि हम न केवल अपना कल्याण करें बल्कि हम औरों के भी कल्याण में सहभागी बने। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबा

केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर है मन्नाडे और शोभा जोशी का, और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। मां गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: एक ज्ञान ऐसा है जो सीखने से मिलता है, और एक ज्ञान ऐसा है जो भूलने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जो दौड़ने से मिलता है, और एक ज्ञान ऐसा भी है जो रुक जाने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जिसे पाने के लिए महत यात्रा करनी पड़ती है, और एक ज्ञान है जिसे पाने के लिए केवल अपने भीतर झांक कर देखना काफी है। जो ज्ञान श्रम से मिलता है वह बाहर का ज्ञान होगा, आखिरी अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं। अंतिम अर्थों में तो जो अपने भीतर ही पाया है वही बस मूल्यवान होगा, क्योंकि जो ज्ञान हम बाहर से पाते हैं उससे हम स्वयं को नहीं जान सकेंगे, और जिस ज्ञान से स्वयं का जानना न हो वह ज्ञान नहीं है, केवल अज्ञान को छिपाने का उपाय है। पांडित्य से प्रभा उभरती है यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। पांडित्य से प्रभा उभरती नहीं है, सिर्फ छिप जाती है, ढक जाती है। एक तो ज्ञान है खुले आकाश जैसा, जहाँ एक भी बादल नहीं है, और एक ज्ञान है आकाश बादलों से भरा हो, जहाँ सब आच्छादित है। मनुष्य की आत्मा आकाश जैसी है, न कहीं गई न कहीं जाने को कोई जगह है, न कहीं से आई न कहीं जा सकती है, आकाश की तरह है, सदा से थी और सदा होगी, कोई समय का कोई स्थान का सवाल नहीं। तुमने कभी पूछा कि आकाश कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? आकाश अपनी जगह है, आत्मा भी अपनी जगह है। आत्मा अर्थात भीतर का आकाश, परंतु आकाश में भी बदलियां घिरती हैं, वर्षा के दिन आते हैं, आकाश आच्छादित हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसकी नीलिमा बिल्कुल खो जाती है, उसकी शून्यता का कोई दर्शन नहीं होता, सब तरफ घने बादल घिर जाते हैं। ऐसे ही चेतना के आकाश पर भी बादल घिर जाते हैं, स्मृति के, विचार के, ज्ञान के, जो बाहर से अर्जित किया हो। और जब बादल घिर जाते हैं तो भीतर की नीलिमा का भी कोई पता नहीं चलता, भीतर की शून्यता बिल्कुल खो जाती है, भीतर का विराट शूद्र बदलियों से ढक जाता है। एक तो ज्ञान है बदलियों की भांति, जिसे तुम दूसरों से प्राप्त करोगे, जिसे तुम किसी से सीखोगे, शास्त्र से, समाज से, संस्कार से तुम उसे संग्रहित करोगे। जितना संग्रह बढ़ता जाएगा, जितना पांडित्य घना होगा, उतना ही भीतर का आकाश ढक जाएगा। जितना जानोगे उतना भटकोगे। जानने वाले का अहंकार उस मुक्त आकाश में नहीं ठहर सकता, क्योंकि एक ही पाप है, वह है अपने को भूल जाना। और अपने को भूलने का एक ही ढंग है, दूसरी चीजों को याद करने में लग जाना। फिर जगह ही नहीं बचती अपने को याद करने की, फिर हजार चीजें याद हो जाती हैं, एक चीज भूल जाती है, और हजारों की भीड़ में तुम्हारा कहाँ पता चलता है? बाजार की भीड़ है, आंकड़ों का फैलाव है, जानते तुम बहुत हो लेकिन भीतर तुम अंधेरे बने रहते हो। जिस जानने से स्वयं को न जाना जा सके उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह ज्ञान भ्रम है, आभास है। इस जगत में या तो तुम स्वयं को जान सकते हो और या तो शेष सबको जान सकते हो, क्योंकि दोनों के आयाम अलग अलग हैं। जो स्वयं को जानता है उसे भीतर की तरफ मुड़ना पड़ता है, जो और कुछ जानना चाहता है उसे स्वयं को छोड़कर भीतर की तरफ पीट कर लेनी पड़ती है। स्वभावतः अगर मुझे तुम्हें देखना है तो मैं स्वयं को कैसे देख पाऊंगा? तुम्हें देखना है तो मेरी आंखों में तुम भर जाओगे, तुम्हारा बादल मेरी आंखों में तैरेगा। और अगर मुझे स्वयं को देखना है तो मुझे तुम्हारी तरफ से आंख बंद कर लेनी पड़ेगी। सन्यासी का यही धर्म है, जिसने औरों को देखने से आंखें बंद कर ली, जिसने और कुछ सीखने से आंखें बंद कर ली, जिसने संकल्प कर लिया कि जब तक स्वयं को नहीं जान लेता तब तक और कुछ जानने का मूल्य भी क्या है। सब कुछ जान भी लिया और मेरे भीतर अंधेरा होगा तो उस प्रकाश का क्या सार है? चारों तरफ दिवाली होगी और मेरे भीतर अंधेरा होगा तो उस दिवाली से मुझे क्या लाभ होगा? अतः स्वयं को भली भांति जान लेना ही सच्चा और वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि सारा संसार जीत भी लिया और अपने को गवां बैठे तो इस जीत का क्या अर्थ है? 70-80 वर्षों के जीवन में असीमित जानकारियों का अंश मात्र भी हम नहीं जान सकते। अतः

0: स्वयं का ज्ञान ही सच्ची उपलब्धि है।
1: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब सुनते हैं राजकुमार शर्मा का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: कुछ दोहे, जल थल नभ

0: काव्यधारा के अंतर्गत आज आपने राजकुमार शर्मा का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज जानकारी का विषय है गुणों से भरपूर नींबू।
3: नींबू में एक नहीं गुण है पूरे 20। नींबू का सेवन हर मौसम में किया जा सकता है। ये बदलते मौसम के अनुरूप ही अपने गुणों को समायोजित कर मौसमी दोषों से बचाता है। नींबू का मुख्य काम शरीर के विषों को नष्ट कर उन्हें बाहर निकालना है। विभिन्न रोगों से बचने, स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करने के लिए नींबू का रस विटामिन सी का भंडार है। विटामिन सी शरीर में घट जाने से स्कर्वी, एनीमिया, हड्डी के जोड़ों की पीड़ा, रक्तस्राव, दांतों के रोग, पायरिया, कुकर खांसी, दमा आदि रोग हो जाते हैं। उबलते हुए एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर पीते रहने से शरीर के अंग अंग में नई शक्ति अनुभव होने लगती है। नेत्र ज्योति भी तेज हो जाती है। मानसिक दुर्बलता, सिर दर्द, पुट्ठों में झटके लगना बंद हो जाते हैं। अधिक श्रम से भी थकावट नहीं आती है। इसमें बिना शक्कर और नमक मिलाए छोटे छोटे घूंटों में पीना चाहिए। चाहें तो 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। शक्कर और नमक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असाध्य रोगों में लंबे समय तक उपवास रखने के बाद खाना नहीं दिया जाता है, परंतु पानी में नींबू का रस मिलाकर बार बार पीते रहने से शरीर के दूषित पदार्थ निकल जाते हैं और रोग दूर हो जाते हैं। इसके नियमित सेवन से स्फूर्ति रहती है। यदि आपके पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हो, भोजन ना पचता हो, पेट में गैस के कारण हृदय पर बोझ अनुभव होता हो, रात को नींद नहीं आती हो, ऐसे में एक गिलास गर्म पानी में एक नींबू का रस निचोड़कर घूंट घूंट कर पिए। पाचन तंत्र मजबूत होगा और शरीर की सफाई भी होगी। अपच होने पर नींबू की फांक नमक डालकर गर्म करके चूसने से खाना सरलता से पचता है। यकृत के समस्त रोगों में नींबू लाभदायक है। अक्सर आपने देखा होगा कि दूध पीने के बाद छोटे बच्चे उल्टी कर देते हैं। ऐसे में नींबू के रस की 5 बूंद 3 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाएं, शिशु दूध नहीं उल्टेगा। गर्मी की तपन से घुटन महसूस होने पर नींबू की शिकंजी पीने से मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। मलेरिया में नमक, काली मिर्च नींबू में भरकर गर्म करके चूसने से बुखार की गर्मी दूर हो जाती है। 2 नींबू का रस नींबू के छिलकों सहित 500 ग्राम पानी में मिलाकर मिट्टी की हांडी में रात को उबालकर आधा रहने पर रख दें। प्रातः इसे पीने से मलेरिया ज्वर में लाभ होगा। मलेरिया में उल्टी होने लगे तो नींबू में नमक भरकर चूसें, 1 नींबू और गन्ने का रस मिलाकर पिएं, उल्टियां बंद हो जाएंगी। शरीर के विभिन्न अंग और हड्डियां टूटने, नजला, जुकाम और फ्लू होने पर गर्म पानी में नींबू का रस पीते रहने से इन रोगों से बचा जा सकता है। एक फ्रेंच चिकित्सक के अनुसार नींबू को सादे पानी में मिलाकर पीले ज्वर के रोगी को पिलाने से रोगी शीघ्र ठीक हो जाता है। इसमें मीठा ना मिलाएं। हृदय की कमजोरी दूर करने के लिए नींबू में विशेष गुण है। इसके निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनियों में लचक और कोमलता आ जाती है और इसकी कठोरता दूर हो जाती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग को दूर करने में नींबू उपयोगी है।
2: गुणों से भरपूर नींबू, इस विषय पर आज आपने जानकारी सुनी। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, नींबू विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और सिट्रिक एसिड का बेहतरीन स्रोत है और आजकल की गर्मी में इसका सेवन बहुत जरूरी है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को हाइड्रेट रखकर वजन को नियंत्रित करने में मदद भी करता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 होने को है। आइए सुनते हैं खेती की बातें के अंतर्गत खरीफ में भिंडी की बुवाई और सफल पैदावार विषय पर जानकारी।
4: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं। कुछ किसान भाई हमारे दलहनी फसलों की खेती करते हैं, कुछ तिलहनी फसलों की खेती करते हैं और कुछ किसान भाई हमारे सब्जियों की खेती करते हैं। और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस समय की बात करें तो हमारे किसान भाई इस टाइम भिंडी की खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो आज इसी के संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है खरीफ में भिंडी की बुआई और सफल पैदावार। किसान भाइयों, भिंडी भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से एक है। इसकी खेती खरीफ, जायद और कुछ क्षेत्रों में रबी मौसम में भी की जाती है। भिंडी में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी मांग पूरे वर्ष भर बनी रहती है, इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में भिंडी की बुआई सामान्यतः जून से जुलाई के बीच की जाती है। मानसून की पहली अच्छी वर्षा के बाद खेत की तैयारी करके बुआई करना लाभदायक रहता है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। भिंडी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। बुवाई से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और अंतिम जुताई के समय 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए उसकी उन्नत किस्मों का बोना बहुत जरूरी है। भिंडी की बात करें तो हमारे किसान भाई पूसा A4, परभणी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय, कांसी विभूति, कांसी ललिमा और BNR 22 जैसी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ कुछ प्रमुख रोगों के प्रति सहनशील भी होती हैं। किसान भाइयों, अगर बीज की मात्रा की बात करें तो बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीजों को बोने से पहले जैविक उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। बीज उपचार से अंकुरण अच्छा होता है और शुरुआती दौर में रोगों से सुरक्षा मिलती है। जब भी हमारे किसान भाई भिंडी की बुआई करें तो कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। बीजों को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर हमें बोना चाहिए और साथ साथ हमें खेत की भी नियमित निगरानी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरक प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता भिंडी की फसल को होती है। और हमारे किसान भाई फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय दे दें और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के समय जरूर दें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में खरीफ मौसम में वर्षा के अनुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है और वर्षा न होने पर हमारे किसान भाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन के बाद हमें करनी चाहिए। इससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मिट्टी में वायु संचार भी अच्छा बना रहता है और भैया खेत को खरपतवार मुक्त रखने से पौधे की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं वो रोग और कीट होते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो भिंडी की फसल में कई कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। अगर प्रमुख कीटों की बात करें तो महू, सफेद मक्खी, जेसिड और फल एवं तनाछेदक कीट भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। इनकी निगरानी नियमित रूप से करते रहें और साथ साथ हमारे किसान भाई सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने खेत में पीले चिपचिपे ट्रैप जरूर लगाएं, जिससे इनका नियंत्रण किया जा सके। आवश्यकता होने पर हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर उपयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में पीला सिरा मोजक रोग एक गंभीर समस्या है। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है और इससे हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। तो हमारे किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रस्त पौधे को तुरंत खेत से निकाल दें। भिंडी की पहली तुड़ाई बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को फलियों को कोमल अवस्था में 2 से 3 दिन के अंतराल पर तोड़ लेना चाहिए। समय पर तुड़ाई करने से नई फलियों का विकास तेजी से होता है और उत्पादन बढ़ता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार उन्नत किस्मों का चयन, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई, समय पर खरपतवार नियंत्रण और कीट रोग प्रबंधन अपनाकर खरीफ मौसम में भिंडी की सफल खेती की जा सकती है। वैज्ञानिक विधियों से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
2: खरीफ में भिंडी की बुवाई और सफल पैदावार, इस विषय पर आपने जानकारी सुनी। कार्यक्रम था खेती की बातें। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:31 पर आप सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज 9:20 पर सुनिएगा कुलदीप सिंह आर्य और साथियों की गाई रागिनी। प्रातः 9:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम बात आसपास की का। वाचन स्वर एवं संकलन होगा दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का।

भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिएगा सुहाना सफर प्रातः 10 बजे। प्रातः 10:30 पर पत्र और व्हाट्सएप पर मैसेज पर आधारित फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया जाएगा गीत तुम्हारे, और प्रातः 11 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत भी आप सुन सकेंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला, इसका समय रहेगा दिन में 12:05 पर, और दिन में 12:30 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे। फिल्मी संडे में आज की फिल्म रहेगी बेटा। एक और साप्ताहिक कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन सकेंगे बाल वाटिका दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे महान विभूति क्रम में आदिवासी समाज के महान मसीहा बिरसा मुंडा की विषय पर जानकारी। साथ ही आकर्षण रहेगा बालमुख से के अंतर्गत बच्चों की बातचीत का। रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी, और रात्रि 10 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का आनंद आप ले सकेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। सुगम संगीत का समय रहेगा शाम 7:32 पर, जिसमें आज सुनेंगे अजय जोशी के स्वर में चंद गजलें। अदबी दुनिया में कलाम शायर होंगे दीपा करोड़ा। समय रहेगा शाम 7:50 और शाम 6:45 पर विविधा क्रम में सुनेगा विभा पांडे की पूर्व प्रसारित कहानी हौसलों की उड़ान। कृषि जगत कार्यक्रम किसान भाई सुन सकेंगे शाम 6:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, प्रातः के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

0: का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचाल प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
7: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान,

मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:31:58 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ को लेकर आ गई हूँ मैं, आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप? देखिए, स्वस्थ हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लेकिन हमारे साथ है। बस यही बात हर बार हमसे कहना और सुनना हमें आपसे अच्छा लगता है। आपका दिन बेहद खास आज होने ही वाला है, क्योंकि हम और आप एक साथ हैं ना। अच्छा ये बताइए, आज संडे में क्या स्पेशल करने वाले हैं आप? कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ खाने पीने में बहुत बढ़िया सा जो सेहतमंद भी हो बनाने वाले हैं भोजन? देखिए, बात भोजन की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें स्वास्थ्य भी हमें ज़रूर चाहिए। आपने सुना भी होगा फूड सेफ्टी साइंस इन सेक्शन, यानी खाद्य सुरक्षा कार्यवाही में विज्ञान के बारे में हम आज आपसे बातचीत करते हैं। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि खाना सीधे हमारी थाली में जो आ रहा है बस खेतों से हमारे पास पहुंच गया, किसानों की मेहनत से भी पहुंच गया, लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी साथ देता है। खेतों में कीटनाशकों की सही मात्रा से लेकर फैक्ट्रियों में पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज के तापमान को बनाए रखने तक साइंस है। जी हाँ, साइंस इन एक्शन का मतलब ही यही है कि हम तकनीकों का प्रयोग कर खाने को बैक्टीरिया और मिलावट से दूर रखें। तो अगली बार जब आप डिब्बा बंद दूध या कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर दिए गए साइंस सर्टिफाइड मार्क्स जैसे FSSAI का एक लोगो या लिखा हुआ, इसको जरूर देखें, क्योंकि खाद्य जांच प्रयोगशाला भी इसमें कुछ हमारी मदद कर सकती है। खाद्य की गुणवत्ता को परखने के लिए होती है, तो उसका भी हम ध्यान रखें। और कार्यवाही में विज्ञान हमें बताता है कि असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी होते हैं जो फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें बताते हैं सफाई और वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता है। अब ज्यादा क्या कहें, अब तो समझदार है ही ना दोस्तों, सेहत है तो सब कुछ है। किधर चले कुछ बनाने, लेकिन अभी तो समय है जाएगी चुस्कियों का, कॉफी का, तो थोड़ी देर काम करते करते चाय की चुस्की या कॉफी पीते पीते हमारे साथ जुड़े रहिएगा।

0: जैसे जैसे देखिए सूरज की किरणें दुनिया को रोशन कर रही हैं ना, वैसे वैसे हम भी तैयार हो गए हैं सुनहरी यादों, इतिहास के पन्नों और महान व्यक्तियों के सफर को जानने के लिए। तो इतिहास हमें बताता है कि साल 1539 में आज ही की तिथि में 7 जून में बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शासक शेरशाह सूरी को मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी गई थी। यानी कि अफगान के शासक शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी थी और राजनीति की बिसात कैसे पलटती है ये घटना उसकी गवाह बनी। और यही तिथि 7 जून क्रांति का भी है साथियों। साल 1893 में आज ही की तिथि में बापू महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस का प्रयोग किया था। एक ऐसा हथियार बना ये जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया है ना बात। और विज्ञान के क्षेत्र में अगर नजर डालते हैं तो भारत ने आज ही की तिथि में एक ऊंची उड़ान भरी। साल 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भारत का प्रथम जो भारत का उपग्रह था प्रथम वो इस समय उड़ान भर चुका था। और 7 जून का दिन इसलिए भी खास है व्यक्तियों, क्योंकि जो साथियों हमारे कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों ने भी जन्म लिया जो हमें आज गौरवान्वित करते हैं। श्रोताओं, आज भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्मदिन है। 7 जून 1974 को उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया और दुनिया भर में भारत का तिरंगा लहराया है। 1998 में आज ही की तिथि में जन्म हुआ पैरा एथलीट सुमित अंतिल का, जिन्होंने भाला फेंक में भारत के गौरव को बढ़ाया है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। और आज ही की तिथि में 7 जून 1914 में सिनेमा और कलम के जादूगर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का जन्म भी हुआ। उनकी लिखी कहानियों और फिल्मों ने समाज को एक नया आईना दिखाया। पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना कि हम जैसा सोचते रहें जीवन वैसा ही चलते रहे। कुछ ऐसी तिथि या ऐसा दिन भी होता है जो हमें याद दिलाता है कि आज के दिन हमें किसने अलविदा कहा। कंप्यूटर विज्ञान के जनक और महान अंग्रेज गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग को आज हम नमन करते हैं, जिनका 1954 में आज ही की तिथि में यानी 7 जून को निधन हुआ था। आज हम जो कंप्यूटर एआई की दुनिया देख रहे हैं ना साथियों, उनकी नींव ट्यूरिंग साहब ने ही रखी थी। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बी डी जत्ती जी का निधन 2002 में आज ही की तिथि में हुआ। और नृत्य की दुनिया के गुरु नटराज रामकृष्ण जी को भी आज हम उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका ये योगदान यह देश हमेशा ही याद रखेगा। तो 7 जून 2011 को आपका निधन हुआ और हम कहते हैं कि हमारे जो गुरु नटराज हैं उनका आशीर्वाद भी हमें चाहिए होता। और संगीत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने आराध्य को उनको ना मनाए। लेकिन अभी गीत से पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।

0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथियों, जून का महीना है और हमारे पढ़ने वाले बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में घर में खूब चहल पहल है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा जी, बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी, ताई जी, यानी और दोस्तों से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे साथी होंगे जो इस गर्मी के मौसम पर पहाड़ों पर घूमने जा रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं, श्रद्धालु साथी हैं, जो चार धाम यात्रा के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे होंगे। तो देखिए, जो भी कहीं भी जाता है तो हम तो बार बार कहते हैं कि अच्छी तैयारी के साथ जाएं और अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें। जब चार धाम यात्रा और श्री अमरनाथ जी की यात्रा के रजिस्ट्रेशन की बात है तो हम आपसे कहेंगे कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन और टूर पैकेज के लिए आप ठगों से सावधान रहें। जी हाँ, जब हम कहीं जाते हुए सोचते हैं तो सोचते हैं कि सारी यात्रा आरामदायक हो, तो ऐसे में कई बार हम कुछ गलत निर्णय भी ले देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते समय या टूर पैकेज के लिए जब आप तैयारी करें तो भाई ठगों से ज़रूर सावधान रहें। बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट्स पर सस्ते टूर पैकेज, हेलीकॉप्टर टिकट, वीवीआईपी दर्शन के नाम पर झूठे वायदे किए जा रहे हैं, है ना सच्ची बात? तो हमेशा याद रखिएगा कि सरकार द्वारा अधिकृत यानी ऑथराइज्ड ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन कराएं और बुकिंग कराएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर ना करें, वो कहेगा कि मैं तो और उसे कम ले लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपकी थोड़ी सी सावधानी भक्ति यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाएगी। और आइए हम भी भक्ति में डूबते हैं और प्रभु का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के अंतिम सेगमेंट की ओर चलते हैं और देखते हैं अखबारों की सुर्खियां। तो अमर उजाला लिखता है कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा के पेपर लीक के दावे फर्जी, ये कहा एनटीए ने। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, बिना डरे छात्र करें तैयारी। खेल की खबर है, भारत चैंपियन हॉकी 18 एशिया कप, जापान को हराकर जीता ये खिताब, आशीष की हैट्रिक, टॉप स्कोरर बनिए। साथ ही एक और न्यूज है, वैभव इंडिया में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर, 15 साल 71 दिन हैं और सचिन से भी हैं ये छोटे। लिखा है कि सचिन तेंदुलकर के 16 साल 194 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने महिला टीम में 15 साल 220 दिन का शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो बहुत शुभकामनाएं। और प्रदेश में 22 जिलों में आधार सेवा केंद्र होंगे शुरू और 71 का है लक्ष्य, ये भी खबर अमर उजाला की है। साथ ही एक और खबर है, भारत को विदेशी ताकत आदेश नहीं दे सकती, प्रतिबंध उल्टा असर डालेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रणनीतिक स्वायत्ता विश्व का किया है पुरजोर समर्थन। अब देखते हैं कि दैनिक जागरण क्या कहता है और दैनिक जागरण में से हमने खबरें ली हैं कुछ अपने पढ़ने वाले लोगों के लिए और कुछ रोजगार परक

के लिए टीजीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 12 जून तक मांगी आपत्तियां, लिखा है दैनिक जागरण में। और साथ ही खबर है कि क्वेप्ट ही करेगी पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी कॉपियों की स्कैनिंग, सीबीएसई ने फिर जताया भरोसा, पर डाटा अपने पास नियंत्रण में ले लिया। एक खबर है दिल्ली से लखनऊ वाराणसी के रास्ते सिलीगुड़ी जाएगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने बंगाल के सीएम के साथ बैठक के बाद की घोषणा। हिंदुस्तान लिखता है कि H-1B वीजा धारकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक फैसला क्रम में है न्यूज। लिखती है कि सैन्यकर्मी के आश्रितों को भी आरक्षण का हक, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सशस्त्र बल के अधिकारी और कर्मचारी के बच्चों के साथ ही निर्भर भाई बहन भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसला नौसेना के एक मृत अधिकारी के छोटे भाई बहन को MBBS पाठ्यक्रम में शिक्षा जारी रखने का आदेश देते हुए सुनाया गया है। और एक और बड़ी खबर कि यूपी में 32,000 सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी कल से, 8, 9 और 10 जून को दो दो पालियों में परीक्षा होनी है, CCTV कैमरों में होगी निगरानी और परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा है। हॉकी में भारत तीसरी बार बना एशिया का सरताज, और भारत तीसरी बार अंडर 18 पुरुष एशिया कप में हॉकी का सरताज बन गया है, और शैली सिंह ने लगाई स्वर्णिम छलांग। एथलेटिक्स की इस खबर के साथ सबको बहुत शुभकामनाएं, और अब देखिएगा समय तो कहता है कि अब आपसे चलना होगा लेकर विदा, तो चलते चलते सुनिए ये गीत।

तो श्रोताओं, जैसा ये गीत कह रहा है, हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपसे फिर होगी मुलाकात। और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया। वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर

0: शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर पलक्कड़ मलप्पुरम कोझिकोड वायनाड कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा। विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कर्नाटक कोंकण तथा गोवा लक्षद्वीप महाराष्ट्र हिमालय के तटीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल सिक्किम तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा तेलंगाना पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ते की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record sixth time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
7: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps. For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
6: The National Testing Agency, or NTA, has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
8: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, has said that the government is committed to fostering a digital health ecosystem in the country. In an exclusive interview with Akashwani News, the minister said that India has created over 90 crore unique Aadhaar identity cards under Ayushman Bharat digital mission and over 100 crore digital medical records have been linked to these Aadhaar IDs. The full interview will be broadcast in our special series 12 Years of the Modi Government today at 7:10 p.m. on 100.1 MHz Akashwani FM Gold and additional frequencies. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kalighat will be significantly upgraded. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grant arrangements will be made for the upcoming Shrabani Mela at Tarakeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the Chief Minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. Describing West Bengal as a sacred spiritual land, Mr. Adhikari said the era of appeasement, lawlessness and lack of investments is now over. Mr. Adhikari emphasized that the alignment of the state government with the centre will accelerate development, as he cited a series of central government projects being implemented in West Bengal. Prime Minister Modi chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. In a social media post yesterday, the Prime Minister said they deliberated on a

0: चंदन का एहसास। 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, हमें हर चीज की जानकारी होना जरूरी है, सतर्कता के साथ हम अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज मैं आपके साथ हूँ आपके सखी निधि भरद्वाज। श्रोता, सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत मनहर और अनुराधा पटवाल की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है राम लखन, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है इसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खोकर पाने का मजा कुछ और है श्रोताओं, खोकर पाने का मजा कुछ और है और रो रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। लेकिन अगर अपना मनमीत मिल जाए और उसको अपने दिल की बात बता दी जाए तो फिर उसका तो मजा कहा ही नहीं जा सकता।

अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज़ में आपने फिल्म राम लखन का गीत सुना। और देखिए, अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो इस तरह भी हम उसे मना ही सकते हैं ना। नाम ले रहे हैं, उसको बार बार याद कर रहे हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं, तो बताइए नाराज़गी कितनी दूर चलेगी। पर नहीं चलेगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। और श्रोताओं, चलिए अब चलते हैं तीसरी मंजिल। अरे कहीं बाहर नहीं जाना है, फिल्म तीसरी मंजिल के इस गीत की ओर। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज में जब आप ये गीत सुनेंगे तो आनंद तो लेंगे ही। देखिए, सुनिए, इतना प्यारा सा गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

0: कहाँ खो गए साथियों, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इस गीत में फिल्म लव मैरिज का ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। सुनते रहेगा गोल्डन हिट्स फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के नचिबाबाद केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, रात का अंधेरा तो बहुत दूर पहले ही दूर हो गया और अब तो सूरज की किरणों से ये सवेरा और भी खुशनुमा हो चुका है। तो इस समय में बहुत से साथी कुछ काम को निपटाते हुए होंगे, तो कुछ खेल कूद से भी लौट रहे होंगे और कुछ हमारे बच्चे खेल रहे होंगे। खेल खेल में गीत हो जाए क्या? आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। फिल्म है हमारी लव मैरिज, संगीत है शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

हमने जब घुमाया प्यार का ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा।

0: हारे प्यार का मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW।
1: मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में आपने फिल्म लव मैरिज का एक गीत सुना। साथियों, प्यार में हार कर ही मजा आता है ना? आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का यह अंतिम गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम आप भी चाहते होंगे कि यूं ही चलता रहे, लेकिन हसरत जयपुरी के इस प्यारे से गीत के साथ अब दिल एक मंदिर के गीत को संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिएगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 हुए हैं।
1: सामयिक चर्चा,
2: सामयिक चर्चा, सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
4: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए
3: जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
4: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस स्कीम के लाभों को पहुंचा सके। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक ईएमआई होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने आईसी एक्टिविटीज का, जागरूकता का प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीजें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाए कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं।
3: आपने बताया जैसे कि लगभग प्रतिदिन करीब जो है 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली जो है इस योजना के तहत उत्पन्न की जा रही है प्रदेश में, तो इससे आम उपभोक्ताओं के जीवन में किस तरह से राहत पहुंची है, उसका क्या असर पड़ा है?
4: जैसा कि आपने बताया, रोज लगभग 5 करोड़ से अधिक की इसमें विद्युत की उत्पादकता हो रही है। आपने जैसे मेंशन किया था कि अप्रैल में हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं बताना चाहूंगा कि मई महीने में हम इससे भी ज्यादा कर पाए और लगभग 64,000 के आसपास हम पूरे माह में इसमें अचीव कर पाए हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो अपने आप में सिर्फ इस योजना के तहत ही 7 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निरंतर इसमें कैपेसिटी जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो लगातार हमारी सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है घरों में उसमें भी वृद्धि हो रही है।
3: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
4: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम, और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाया जा रहा है?
4: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में, जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा है।
3: आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो लाभान्वित हो।
4: पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है सीवन। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम सीवन कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान
3: जी। सौर ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम बनकर उभरा है?
4: सौर ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो पीएम सूर्य घर में हम अधिक से अधिक घरों को इसमें लाभान्वित कर पाए हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा नए वेंडर्स को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे पास में कुल मिलाकर 6,500 से ज्यादा वेंडर पंजीकृत हैं और अकेले मई माह में ही हमने 700 से ज्यादा वेंडर्स को पंजीकृत किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वेंडर्स में भी इसमें बहुत ज्यादा रुचि है, उत्साह है और सभी वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। और इसमें अगर हम रोजगार की बात करें तो 70,000 से ज्यादा तो डायरेक्टली रोजगार पहुंचा है और अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अलावा 1,00,000 अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न प्रकार से रोजगार हुआ है। इसी प्रकार से सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत भी हम महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम इस चीज के क्रियान्वयन में और प्रचार प्रसार में जोड़ रहे हैं।
3: आपने सोलर पावर दीदी कार्यक्रम का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ये कार्यक्रम क्या है, इससे किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए लाभान्वित हो रही है?
4: सोलर दीदी योजना के तहत हम विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को इस पूरे अभियान में जोड़ रहे हैं। इसमें इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जा रही है हमारे वेंडर्स के माध्यम से और फिर इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिससे कि पूरा जो रूफटॉप सोलर का एक इकोसिस्टम है उसमें ये अपना वैल्यू एडिशन कर सके। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शुरू शुरू में जब उपभोक्ता सोलर रूफटॉप को अडॉप्ट करते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा एप्रिहेंशन होता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक लोकल लोगों को इसमें जोड़ें जो कि पहले से अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े हुए हों, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ज्यादा इफेक्टिव होगी और साथ के साथ में रोजगार भी
3: जी। प्रदेश में सोलर पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश आया था, इसको लेकर क्या काम किया गया, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर अभी उतर आए?
4: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई जो भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और जीबीसी सेरेमनीज हुई हैं, इनमें निवेशकों ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक उत्साह दिखाया है। अभी तक करीब 2.5-3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं जो उनका एमओयू हो गया है और जीबीसी के लिए वो रेडी हैं। अभी हम जीबीसी 5 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आज की तारीख में 7,500 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो गई।
3: आपने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं धरातल पे आ रही हैं, तो ये सोलर परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं? साथ ही यह परियोजनाएं जो पर्यावरण और कृषि के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती
4: है? इसमें मेरा मानना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ में जैसे जैसे हमें अपना औद्योगिकरण बढ़ाना है और जिस प्रकार से AI और डेटा सेंटर्स आ रहे हैं तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और अगर उस पावर को हमें अचीव करना तो ये जरूरी है कि हम पूरी तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी पे अपने आप को सीमित न रखें बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से हम स्वावलंबी बने, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े एनर्जी की नीड्स के लिए। और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है।
3: ये सोलर परियोजनाएं खासकर ग्रामीण परिवेश की अगर बात करूं तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए?
4: किसानों को भी जोड़ने के लिए हमने पीएम किसुम स्कीम के तहत काफी प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था सीवन कंपोनेंट के तहत तो सीधे ही हम किसानों तक इस स्कीम को ले जाते हैं और इसमें कई किसानों ने उत्साह दिखाकर इसको अडॉप्ट किया है, जिससे कि जो उनके पंप होते हैं ट्यूबवेल्स होते हैं उनको वो सोलराइज कर लेते हैं, तो एक तरीके से ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एक और कंपोनेंट भी है पीएम कुसुम स्कीम में C2, जिसके तहत हम पूरे एक फीडर लेवल पे सोलराइज करते हैं, तो उस फीडर से जिन जिन भी किसानों तक विद्युत पहुंच रहा है उनको भी इस बात में मदद मिलती है कि समय से और पर्याप्त ऊर्जा उन तक पहुंचे।
3: क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन वेंडर्स का आपने जिक्र किया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए भी क्या वेंडर्स को खास तौर पर ट्रेन किया गया है कि ये योजना खासकर पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो वेंडर्स हैं उनकी रीच को बढ़ाने के लिए काम किया?
4: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएम सूर्य घर योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो, इसलिए हमने अलग से इस ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था, टारगेट रखा था और हमने कोशिश की थी कि इसकी रीच अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच सके। और इसके लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं, अलग अलग जनपदों में हम अपना स्टाफ भी भेजते हैं जो वहां के वेंडर्स हैं, कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से बाकी सब वेंडर्स को ट्रेन किया जा सके। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे नीडा की तरफ से ही 3 प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं जिसपे निरंतर हम सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण देते रहते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और भी है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, इसलिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कोलैबोरेट कर रखा है और यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कोलैबोरेट करके हम अधिक से अधिक सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं।
3: आपने बताया कि किस तरह से शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सोलर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, अयोध्या को सोलर सिटी की तरह विकसित किया जा रहा है, साथ ही अन्य किन जनपदों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान है?
4: हमारा सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें एक अयोध्या पे विशेष रूप से हम अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसके साथ ही अन्य जनपद भी हैं। इसके तहत हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक नगर निगम में जो भी उनकी एनर्जी कंजम्पशन है उनको हम इतना फंड देते हैं राज्य सरकार के माध्यम से कि वो अपना एनुअल एनर्जी कंजम्पशन को 10% कम कर सके बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है।
3: जब हम किसी शहर को सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक आम जनता को समझाने के लिए अगर जानना चाहें तो आप इसको किस तरह बताएंगे कि अयोध्या को अगर हम सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स?
4: हमारे अभी वर्तमान में पैरामीटर ये हैं कि प्रत्येक वर्ष हम जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 10% कम करें कन्वेंशनल सोर्सेज से, और हमारा अंत में लक्ष्य ये रहेगा कि अधिक से अधिक जो एनर्जी कंजम्पशन है इन एरियाज का, अयोध्या का भी और अन्य नगर निगमों का भी, वो सोलर आधारित हो, जिससे कि ओवरऑल भी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन एनर्जी डिमांड पैटर्न है उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
3: सोलर सिटी की तरह ही सोलर एनर्जी विलेज बनाने की भी प्लानिंग है, प्रयागराज में पहला सोलर एनर्जी विलेज बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो क्या है और उसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं।
4: हम प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक मॉडल सोलर विलेज के लिए 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हम DPR बनाने की अभी प्रक्रिया में है और इसमें हमने सोचा है कि DPR है वो बॉटम अप अप्रोच से हो, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ही ग्राम अपने रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को चिन्हित करे, जिसकी कहां कहां उन्हें स्ट्रीट लाइट लगानी है या फिर सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, जिससे कि वो अपना स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बने।
3: शहरों से लेकर गांव तक सोलर सिटी बनाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दे?
4: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, इसको अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है, हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाए जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकते।
3: जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है, उनसे आपकी क्या अपील होगी?
4: मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी जरूर इसको अपनाएं और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने खुद ने ये सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगाया है तो निश्चित रूप से वो आपको खुद कन्विंस करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए।
3: जी निश्चित रूप से, जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा के महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविन्द्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता।

यानी कि नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुलदीप सिंह आर्य और साथियों की गाई रागनी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कुलदीप सिंह आर्य और साथियों की गाई रागिनी।

धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने कुलदीप सिंह आर्य और साथियों के स्वर में रागनी सुनी। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:50 हो रखे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का है।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यम कंडवाल
1: और मैं इशिका कौशिक।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं व मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: दिव्यम, आज सुबह जब मैं सब्जी मंडी गई तो देखा कि हर हाथ में कम 4-5 प्लास्टिक की थैलियां थी। हम जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: सही कहा इशिका, सुबह की चाय के डिस्पोजल कप से लेकर रात के खाने की पैकिंग तक प्लास्टिक ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आज बात आसपास की में हम चर्चा करेंगे कि यह वंडर मटेरियल कैसे हमारे समाज के लिए ब्लेंडर बन गया है।
1: इसलिए हमारा विषय है प्लास्टिक, आज की सुविधा कल का खतरा।
0: आइए सबसे पहले जानते हैं आम जनता के विचार।
1: आपका नाम?
2: मेरा नाम पंडित मनोज गौड़ है।
3: सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए काफी एक प्रॉब्लम बन चुका है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पशुओं के लिए है। अधिकांश देखा होगा आपने, गाय बहुत सारी सड़कों पे बीमार पड़ी है, जहाँ तहाँ पन्नियाँ पड़ी हैं तो वो गाय के पेट में जाती हैं, भोजन लपेट के दे देते हैं, तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है। इस पे पॉलिथिन पे बैन

0: होना चाहिए, लेकिन बैंड यहाँ नहीं, फैक्ट्रियों पे बैंड होना चाहिए। दुकानदार पे बैंड लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, समस्या का समाधान तभी होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, जब करेंगे तभी होगा। सबसे पहले जितना भी प्रतिबंध लगाया जाए, पॉलिथिन बनाने वाली फैक्ट्री पे लगाया जाए।
1: आपका नाम?
2: कुलवीर सिंह।
1: सिंगल यूज प्लास्टिक पर आपके क्या विचार हैं?
2: जी देखिए, प्लास्टिक का यूज आजकल हमारे जीवन में बहुत हो रहा है। प्लास्टिक वगैरह ऐसा है, मतलब गुजारा है ही नहीं। आप कुछ मार्केट लेने जाते हो, प्लास्टिक के बैग हर जगह मिलते हैं। पानी के लिए बोतल भी प्लास्टिक की, खाने के लिए बर्तन भी प्लास्टिक के, चम्मच वगैरह, पत्तल, सब प्लास्टिक में आ चुका है। तो प्लास्टिक जो हमारे जीवन अहम हिस्सा बन गया है।
1: आप जब कभी सब्जी खरीदने निकलते हैं तो आप किस तरह से ध्यान रखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो?
2: जी वैसे तो मम्मी जाती है तो मैं उनको कपड़े का बना हुआ बैग देता हूँ।
1: प्लास्टिक की बोतलों को आप किस तरह से रिसाइकल करते हैं?
2: जी प्लास्टिक की बोतल, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुई कोई, उसकी बोतल आती है तो हम उसको मतलब कोल्ड ड्रिंक तो पी लेते हैं, फिर बाद में वेस्ट पड़ी रहती है तो उसको या तो बेच देते हैं या फिर कोई हैंडक्राफ्ट बना लेते हैं घर में।
3: ललित कुमार प्रजापति।
4: प्लास्टिक पे रोकथाम पे आपके क्या विचार?
3: प्लास्टिक के लिए तो अब छोटा बड़ा सभी है, उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन इसके बिना जो आदमी की दिनचर्या है वो भी इतनी आसान नहीं है। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, आप खुद देख लीजिए, उसमें प्लास्टिक का यूज होता है। आप घर में दूध की थैली लाते वो प्लास्टिक में आती है, आप पानी की बोतल लाते वो प्लास्टिक में आती है, आप बच्चों का चिप्स कुरकुरे यूज करते वो प्लास्टिक में आता है। चीज के लिए अगर सरकार अपने स्तर पर कुछ करे, उसके लिए हमें इस चीज का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम मजबूर हैं कि हमें प्लास्टिक ही यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन दिए कि हम उसका यूज ना करें जो नुकसानदायक ना हो।
4: अभी हमने जाना प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं के बारे में, लेकिन इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं पर्यावरण प्रेमी रश्मि अग्रवाल जी द्वारा उठाए गए कदम।
5: ऐसा था कि मैं इनरविल संस्था से जुड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय इनरविल संस्था, तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो भी हमारे घर का जितना भी कचरा है, जिसमें जो भी पन्नी है, ये वाली पन्नी या बिस्किट की पन्नी या कोई सी भी पन्नी है, तो मैंने अपनी सारी महिलाओं से कहा कि आप 1 लीटर की और 2 लीटर की बॉटल, जो भी कोल्ड ड्रिंक की हो या कहीं की भी हो, उन खाली बोतलों में कैंची से काट के उन पन्नियों को भरवाएं और उनको फिर ठोक के भरवाएं, ताकि वो हमारी जो बोतल है वो टाइट हो जाए।
1: इको बिक्स को आपने बढ़ावा दिया।
5: हाँ, तो जब मैंने ये काम मतलब अपनी करीब 20 महिलाओं से करवाया तो ये हमारी 1-1.5 महीने में 350 मेरी बोतल इकट्ठी हो गई। तो फिर हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों ना SDM से मिले और इससे एक बेंच बनवाएं, क्योंकि मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि कोई टॉयलेट किसी ने कहीं बनवाया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, उन्होंने परमिशन दे दी। तो हमने फिर उसमें अपनी वो सारी बोतल, मेरे ख्याल से शायद 150 बोतल हमारी यूज हुई थी, बनी हुई है और उसमें 5-6 लोग आराम से बैठते हैं, पूरी मजबूत है, बहुत बढ़िया, 2 साल हो जाएंगे। तरह से उसमें हमने बॉटल लगवाई कि वो बॉटल दूसरा देख भी सकता है कि ये हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वो साइडों को बंद नहीं करवाया, उनको खुला रखा और उसमें सिर्फ सीमेंट का ऊपर यूज हुआ, उस बॉटल से ही वो हमारी बेंच तैयार हो गई। इससे क्या हुआ कि एक तो 1 महीने का जो कचरा है हमारा, पन्नी प्लास्टिक जो भी है, वो सारा हमारा सड़क पे नहीं गया। हमने तो बल्कि बाजारों से, दुकानदारों से मंगवाए पन्नियां कि जल्दी जल्दी हम तैयार कर लें। तो आप ये देखो कि अगर ये काम, इसमें गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प करे तो कितनी जगह ऐसी बनी पड़ी है कि जहाँ स्कूल है, वहाँ पार्क है, वहाँ हम कितनी चीजें इससे बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
5: हमने टेबल बनवा दी, अपने बेंच बनवा दी, हमने कितनी चीज। तो आप एक मतलब छोटी सी बात सोच के चलो कि अगर 20 महिलाओं का कचरा 1-1.5 महीने सड़क पर नहीं गया तो कितनी पर्यावरण के लिए अच्छी बात है।
1: कितना आश्चर्यजनक है कि एक प्लास्टिक की थैली को गलने में लगभग 500 साल लगते हैं। यानी जो थैली हम आज फेंक रहे हैं वो हमारी कई पीढ़ियों तक धरती को बीमार रखे। इसी क्रम में सरकार और प्रशासन ने क्या कदम उठाए, आइए जानते हैं। श्रोताओं, नगर पालिका परिषद नजीबाबाद से श्री आदेश कुमार सैनी, सैनिटरी इंस्पेक्टर से हमने जाना। सर, आप हमें बताइए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बावजूद बाजारों में यह धड़ल्ले से दिख रहा है, प्रशासन इसके ऊपर जुर्माने के और कार्रवाई में कितना सफल रहा है?
6: जैसे कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बैन है, उसके बावजूद भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक नगर में आ रहा है और जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी इसको अपना सामान देते हैं, उसमें नेचुरल बेचते भी हैं, तो उसके लिए पर जैसा भी शासन का आदेश है उसके अनुसार हम लोग नगर में जाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, उस पर बैन लगाने के लिए जब्त करते हैं, जो नहीं मानता है जुर्माना भी लगाते हैं। उसके साथ साथ हम जो सेग्रीगेट हमारा कूड़े के अंदर जो आता है प्लास्टिक, उसको हम सेग्रीगेटेड MRF सेंटर पे करते हैं, उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट जो प्लास्टिक होता है उसको रखकर, बोतल्स हुए, प्लास्टिक हुआ या कोई भी चीज़ें होती हैं, उनको अलग अलग करके हम उसको सेल करते हैं, जिससे एक अर्निंग होती है नगर पालिका। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि लोग वहां अपने घर से थैला लेके चले, जिससे कि घर में प्लास्टिक ना आए। और चीज तो रिसाइकल

0: रिसाइकलेबल होती है, लेकिन पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जो हर तरह से खतरनाक है, रिसाइकलेबल नहीं होता वो, जहाँ गिर जाता है जमीन में गिर जाता है तो वहाँ तक गलता भी नहीं। तो उसके लिए यही है कि हम लोग समझाते हैं, प्रयास करते हैं समझाने का अपने घर से लोगबाग, स्कूलों में भी हम कंपेन करेंगे, सभी स्कूलों में गए लगभग, बच्चों को समझाया उनके माध्यम से कि हम जानते हैं कि बच्चे इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और अपने परिवार में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
1: सर, आने वाले एक दो साल में क्या हम अपने नजीबाबाद को प्लास्टिक फ्री देख सकते हैं?
0: प्रयास तो पूरा है कि नजीबाबाद के अलावा पूरा देश हो जाए, ये जनता के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो हमें फॉलोअप करें और सरकार को फॉलोअप करें, जिससे कि इस अभिशाप से मुक्ति मिल सके। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे भविष्य में ये शहर ये नगर साफ सुथरा रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे। जो यहाँ की जनता है उससे यही अपील है कि अपने घर से थैला लेकर ही जाएं, प्लास्टिक को घर पे ना आने, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक पूर्ण तरह से बंद नहीं हो सकता है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल गलत है।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चेयरमैन नगर पालिका परिषद नजीबाबाद का संदेश।
2: मैं आकाशवाणी नजीबाबाद के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, ये सालों साल सदियों तक मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है। जब पानी बरसता है तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना चाहिए, मगर क्योंकि पॉलीथीन रास्ते में सब ये आ जाती हैं और पानी नीचे नहीं जा पाता, और वो पानी नालियों के माध्यम से बह करके नदियों में पहुंच करके समुद्र में वो पानी पहुंच जाता है जो ग्राउंड में पहुंचना चाहिए। और ये आने वाले वक्त में जैसे हम बैंक्स के अंदर अपने पैसे जमा करके रखते हैं अपने बच्चों के लिए, इसी तरह हमें पानी का भी संचय करके, ग्राउंड वाटर का संचय करना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए पॉलीथीन का यूज एकदम बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, बदलाव मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं,
1: इसलिए अगली बार जब बाजार जाएं तो अपनी जेब में एक छोटा सा कपड़े का थैला जरूर रखें। आपकी एक ना हजारों सालों की बर्बादी रोक सकती है।
3: इसलिए प्लास्टिक को कहिए बाय बाय और नजीबाबाद की मिट्टी को सांस लेने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए
1: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

बात आस पास गई। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, वाचन स्वर और संकलन था दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। भरोसे की गूंज के 90 बरस का ये सुहावना सफर, आवाज का सुनहरा सफर, सुनते सुनाते बीत गया ये स्वर्णिम सफर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को निधि भारद्वाज का पुनः नमस्कार। और साथियों, आज के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ हैं हमारी साथी
1: ममता अग्रवाल। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुहाना सफर में। पूरी करती सबकी आस, इस पर है सबका विश्वास। पूरी करती सबकी आस, इस पर है सबका विश्वास।
0: श्रोताओं के दिल के पास, श्रोताओं के दिल के पास आकाशवाणी सबसे खास, सबसे खास।
1: क्या बात कही है निधि जी, आकाशवाणी सबसे खास। और भाई, हो भी क्यों ना, आकाशवाणी भारतवासियों की धड़कन था, है और रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा। और आकाशवाणी न केवल एक प्रसारण का माध्यम है ममता जी, बल्कि देश की संस्कृति और एकता का भी तो प्रतीक है।
1: बिल्कुल सही निधि, सुनते सुनाते कब बीत गए ये 9 दशक।
0: जैसे पलकों पर ठहरी हो कोई चमक, कभी खबरों की गंभीरता तो कभी गीतों की मधुरता।

0: या हर धड़कन में बस गई इसकी एक झलक ममता
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत खूब कहा आपने। और अब श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम में जिक्र कर रहे हैं साल 2025 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का जो आकाशवाणी के प्रसारण का हिस्सा रही हैं।
0: जी हाँ साथियों, वर्ष 2025 की सभी घटनाओं के दौरान आकाशवाणी ने सूचना के प्रसार, जन जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मार्गदर्शक भी बना।
1: डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता और सटीक रिपोर्टिंग से अपनी एक अलग पहचान बनाई रखी है।
0: और साथियों, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सम्मेलनों में भारत की कूटनीतिक सफलता को आकाशवाणी ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर बहुत शानदार तरीके से प्रसारित किया, आप तो जानते ही हैं।
1: निधि जी, केवल इतना ही नहीं, वैश्विक सम्मेलनों के निर्णयों को आकाशवाणी ने न केवल अंग्रेजी और हिंदी में बल्कि भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विदेशी सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित किया।
0: और ममता जी, आपसे और श्रोताओं से पूछना चाहते हैं, 2025 का महाकुंभ का मेला याद है आपको?
1: कैसे नहीं, ये भला इतना बड़ा आयोजन हम कैसे भूल सकते हैं।
0: हाँ, तो वही 2025 का महाकुंभ मेला भारत के प्रयागराज में जो आयोजित हुआ था 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला, और इसका मुख्य आयोजन पवित्र त्रिवेणी पर हुआ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है।
1: अरे निधि जी, संगम की तो बात ही क्या।
0: देश
1: के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम और सूचनाएं प्रसारित की।
0: और इतना ही नहीं ममता जी, आकाशवाणी ने करोड़ों लोगों की महाकुंभ से जोड़ने वाली आस्था को भी जोड़े रखा, और जागरूक बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी समय समय पर प्रसारित करता रहा।
1: बिल्कुल। और निधि जी, हम कैसे भूल सकते हैं कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता के लिए हमेशा जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। 2025 साथियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे निधि जी कि अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों की सबसे पहले बात करें
0: तो वो तो मैं बताना चाहती हूँ अपने साथियों को।
1: बिल्कुल बताइए।
0: श्रोताओं, भारत ने स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में दो उपग्रह की डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन किया।
1: बहुत, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया,
0: और ये भविष्य के स्पेस स्टेशन और मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया। साथियों, इतना ही नहीं ममता जी, वर्ष 2025 को गगनयान ईयर के रूप में भी देखा जाता है।
1: भारत और अमेरिका द्वारा विकसित निसार उपग्रह यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपेचर रडार लॉन्च किया गया, जो कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पृथ्वी की सतह में बदलावों का अध्ययन करने में मददगार साबित हो रहा है।
0: ममता जी, अब इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के बीच हमारे श्रोता चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना दें, क्योंकि हमारी पहचान भी है ना, जिस साल की बात करेंगे उसी साल का गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका इशारा समझ गए हैं। और देखिए, आकाशवाणी तो ज्ञान और मनोरंजन की ही वाणी है ना, तो देर किस बात की। अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं साल 2025 में रिलीज फिल्म स्काई फोर्स का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं
0: अरिजीत सिंह और अफसाना खान ने।
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सुहाना सफर में। और हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में।
1: बिल्कुल ममता जी, 2025 खेल जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस वर्ष भारत ने क्रिकेट, शतरंज, शूटिंग, खो खो, हॉकी और इसके अलावा अन्य कई खेलों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी।
0: जी हाँ श्रोताओं, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने क्रिकेट में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया।
1: साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। ये भारत का तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब था, जिसने भारत इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश बन गया।
0: निधि जी, आपने पुरुष क्रिकेट टीम की उपलब्धि की बात की है,
1: हाँ,
0: तो महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं।
1: भाई हमने कब कहा कि महिलाएं कम है, हम तो खुद ही उसी श्रेणी में आते हैं।
0: तो हम महिला टीम का भी तो जिक्र करेंगे ना।
1: जी बिल्कुल,
0: भारतीय महिला टीम ने पहली बार ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीत कर इतिहास रच दिया।
1: वाह, ये सुनाइए आपने खबर। और 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए स्वर्णिम वर्ष कहा जा सकता है फिर तो।
0: बिल्कुल निधि जी, क्रिकेट में ही नहीं 2025 भारत के लिए शतरंज के क्षेत्र में भी बेहद शानदार वर्ष रहा।
1: सही कहा आपने, भारत ने विश्व शतरंज में अपनी मजबूत पहचान बनाई और नई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। बी गुकेश 2024 में विश्व चैंपियंस बनने के बाद 2025 में भी दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में भी बने रहे और भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद प्रेरणा का स्रोत बने।
0: बिल्कुल, और साथ ही आर प्रज्ञा नंदा ने 2025 में कई बड़े

0: टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने।
1: इसके अलावा साथियों, दिव्या देशमुख 2025 में महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
0: निधि जी, फिर महिला की बात आई, देखिए।
1: हाँ। और पता है, साथ ही वे भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष हो या महिला, जब एक साथ मिलकर चलते हैं ना, तभी शक्ति बनते हैं।
0: शक्ति बनते हैं ना, हम कह सकते हैं कि वो महाशक्ति के रूप में सामने आते हैं।
1: क्योंकि एक से तो देखो बात नहीं बनने वाली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। निधि जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भारत ने 2025 में विश्व शतरंज के बड़े आयोजनों की मेजबानी की। विशेष रूप से भारत में आयोजित विश्व कप ने देश की आयोजन क्षमता को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया।
1: और प्यारे सुधी श्रोताओं, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सटीक जानकारी जन जन तक पहुंचाई हमारी और आपकी आकाशवाणी ने।
0: बिल्कुल निधि जी, हम बात कर रहे हैं खेल जगत की
1: जी,
0: तो भला कैसे भूल सकते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, जो कि भारत के सबसे बड़े बहु खेल आयोजनों में से एक थे, जिनका आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किया गया। यह पहली बार था जब पूरे राज्य स्तर पर उत्तराखंड ने इतने बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी की।
1: जी हाँ, और हमने देखा कि इसमें आयोजन का एक नारा भी था, संकल्प से शिखर तक। इस नारे का उद्देश्य था साथियों, खिलाड़ियों को मेहनत, संकल्प और सफलता की ओर प्रेरित करना। उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस अवसर पर खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और फिटनेस का संदेश दिया गया।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और निधि जी, एक जानकारी मैं और देना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: कि इसमें लगभग 11,354 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
1: अरे, इतने सारे खिलाड़ी हमारे एक साथ थे, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई।
0: जो इसका समापन समारोह हुआ था वो 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में आयोजित हुआ था।
1: वाह ममता जी, आज तो आपने इस खेल के बारे में पूरा आंखों देखा हाल ऐसे बता दिया जैसे 2025 में बताया गया होगा।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, 2025 में भारतीय भाषाओं, अनुवाद, युवा लेखन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय साहित्य की पहचान को नई ऊंचाइयां मिली।
0: अच्छा निधि जी, इसका मतलब खेल जगत की जानकारियों के बाद आप हमें भारत की साहित्यिक उपलब्धियों की ओर ले जाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर साहित्य है, दर्शन है, तभी तो आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है।
0: बिल्कुल। बानो मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान हासिल की और इस तरह भारतीय क्षेत्रीय साहित्य को वैश्विक मंच मिला।
1: और साथ ही साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों ने भारतीय भाषाओं के लेखकों और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया।
0: निधि जी, साथ ही वर्ष 2025 में बाल साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया। हिंदी भाषा में लेखक सुशील शुक्ल को उनकी पुस्तक एक बाते ही 12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया।
1: ममता जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हमारे जो बाल कलाकार, बाल लेखक और बाल साहित्य वाले लोग जुड़े हुए हैं, वो एक नई पहचान बना रहे हैं। इसी बीच एक और हम अपने श्रोताओं को बता भी दें कि अगर आपका बच्चों के कार्यक्रम में रुचि है तो आज का बाल वाटिका जरूर सुने, दिन में 1:15
0: जो हमारे केंद्र से प्रत्येक रविवार प्रसारित किया जाता है।
1: हाँ, तभी तो पता चलेगा ना ये आकाशवाणी सबकी वाणी क्यों है।
0: बिल्कुल
1: ममता जी, बातें तो अभी और भी करना चाहते हैं। चलिए अपने श्रोताओं का एक बार फिर से संगीत की दुनिया में ले जाते हैं और मनोरंजन करवा देते हैं।
0: बिल्कुल, क्यों नहीं निधि जी, तो आइए सुनते हैं 2025 में रिलीज एक बहुत ही चर्चित फिल्म धुरंधर का गीत, जिसे आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है साश्वत।

0: सचदेव ने। तो आइए सुनते हैं निधि जी और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब सुनेंगे और इसके साथ गुनगुनाएंगे, ये हमें पता है।

0: वाह वाह, गीत तो हमने सुन ही लिया, पर अपने श्रोताओं को फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा और हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी निधि भारद्वाज, और मेरे साथ हैं आपके साथी
1: ममता अग्रवाल। निधि जी, हम आजकल पूरे हर्षोल्लास से अपने श्रोताओं के साथ मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये जश्न।
0: हाँ जी, और ये जश्न मनाने की शुरुआत की थी हमने भी 8 जून 2025 से। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं आगामी यानी कल 8 जून 2026 को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और गत वर्ष 8 जून 2025 से पूरे साल आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस स्वर्णिम सफर का अनुभव हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा ममता जी, हमारे श्रोता बताएंगे कि ये एक साल का सफर हमारे साथ इस सुहाना सफर में उन्हें कैसा लगा।
1: बिल्कुल,
0: और साल 2025 की एक खबर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त संघर्षपूर्ण वर्ष रहा ये। ये संघर्ष 7 मई 2025 को शुरू हुआ था।
1: जी हाँ निधि जी, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भयानक आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बल

0: द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक ऐतिहासिक, सटीक और रणनीतिक सैन्य अभियान था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकार विभिन्न समय समय पर हर वर्ग के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, इसी क्रम में वर्ष 2025 में भी कुछ प्रमुख नई योजनाएं शुरू की गई थी।
1: वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता सुधारने और लगभग 100 कृषि जिलों के विकास पर केंद्रित है।
0: इसके अतिरिक्त भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दाल आत्मनिर्भरता मिशन की एक नई पहल शुरू की गई और इसका लक्ष्य था आयात कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।
1: जी हाँ, इतना ही नहीं निधि जी, इसके अतिरिक्त पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए सहायता योजना, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना और गिग वर्कर्स योजना की भी शुरुआत की गई। श्रोताओं, 2025 में भारत ने हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: भाई, आज तो हम 2025 की बहुत सारी खबर एक साथ अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो बता दें कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। लगभग 44.5 GW नई हरित ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि मानी गई।
1: इतना ही नहीं साथियों, भारत सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल रहा। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक और क्षमता वृद्धि में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।
0: और प्यारे श्रोताओं, 2025 में पवन ऊर्जा क्षेत्र ने भी नई ऊंचाइयां हासिल की। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 50 GW से अधिक हो गई और वर्ष के दौरान रिकॉर्ड नई क्षमता उसमें और जोड़ी गई। और ये
1: निधि
0: खबर सारी
1: जी,
0: हमारी आकाशवाणी समय समय पर देती रहती है,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि आज
1: बिल्कुल,
0: भी हम आपको दे रहे
1: तो
0: हैं।
1: आकाशवाणी के माध्यम से ही दे रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही।
1: ठीक कहा आपने, हमारी भारत की संस्कृति बिल्कुल अनूठी है, सतरंगी है।
0: और संरक्षित और प्रसारित करने वाले कार्यक्रमों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने में हर वक्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: और संगीत, साहित्य, त्योहार, लोक संस्कृति, राष्ट्रीय आयोजन, कोई सा भी माध्यम हो, ममता जी, आकाशवाणी ने विविधतापूर्ण कार्यक्रमों से सबको अपने से जोड़ लिया है, जैसे वो दूर ही नहीं जा सकते हैं।
1: बिल्कुल निधि जी, अगर हम बात करें संगीत और नृत्य के क्षेत्र की, तो तरुण भट्टाचार्य को तानसेन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित सम्मान है। साथ ही माधवी मुद्गल को गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया।
0: और कुमुदनी लखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया।
1: निधि जी, हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, फिल्म जगत की भी कुछ बात कर लें।
0: जी हाँ, कर लीजिएगा, लेकिन अभी हमारे श्रोता चाहते होंगे कि कुछ और भी बात हो, पर जल्दी से बता दीजिए वो क्या बात है
1: जी
0: फिल्म जगत
1: हाँ,
0: की।
1: वो ये है कि 2025 में भारतीय फिल्म जगत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने नाम की। यह वर्ष भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कमाई के लिहाज से एक ऐतिहासिक वर्ष रहा।
0: और जब बात कमाई की है तो श्रोता जानना जरूर चाहते होंगे, भाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहली बार लगभग 13,000 करोड़ से अधिक के आंकड़े तक पहुंची इसकी कमाई, और कई फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई।
1: श्रोताओं, ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो कंटारा चैप्टर 1 बड़े पैमाने पर सफल रही और कई भाषाओं में लोकप्रियता हासिल की।
0: छावा वर्ष की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही और वॉर 2 बड़े बजट स्टार कास्ट के कारण चर्चा में रही।
1: साथियों, 2025 में एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों के लिए आईं, जिनमें सिकंदर, स्काई फोर्स, केसरी, रेड 2 और सैयारा, डिप्लोमेट, धड़क 2 शामिल है।
0: तो फिर चलते चलते एक सैयारा का गीत सुनवा दीजिए ममता जी,
1: बिल्कुल
0: आपको हम
1: बिल्कुल
0: रोक तो नहीं सकते लेकिन साथ में म्यूजिक की दुनिया में तो ले चल
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल, बनता है निधि जी एक प्यारा संगीत।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ 2025 की बातें करते करते आपसे विदा लेने का समय हो गया है और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
1: और ममता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 10:30 और 28 सेकंड हो रखे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। साथियों पुनः नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी प्यारे श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम गीत तुम्हारे लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपके सखी निधि भारद्वाज
1: और ममता अग्रवाल।
0: ममता जी, ये जो कार्यक्रम है इसमें श्रोता अपनी पसंद के न केवल गीत सुनते हैं बल्कि अपने नाम और अपने बहुत सारे साथियों के नाम भी भेजते हैं।
1: बिल्कुल निधि जी, और इसीलिए इस कार्यक्रम का हमें और हमारे श्रोताओं दोनों को ही बहुत इंतजार होता है।
0: तो देखिए जो लगातार सुनते हैं ना जी, उनको तो हमारा फोन नंबर एकदम याद है, व्हाट्सएप नंबर, वो भेजना शुरू कर चुके हैं अपने पसंद के गीत।
1: लेकिन हम चाहेंगे निधि जी कि हमारे बहुत सारे नए श्रोता भी कार्यक्रम में जुड़े, तो इसलिए आप बता दीजिए
0: उनके लिए व्हाट्सएप नंबर। तो श्रोताओं नोट कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप अपने नाम को लिखिए, अपने साथियों के नाम को लिखिए, अपने पसंद के गीत को सुनने की फरमाइश कीजिएगा। फिलहाल जो साथी हमसे जुड़ चुके हैं ममता जी, क्यों ना हम उनको देखना शुरू करें।
1: बिल्कुल,
0: ये जो पहले फरमाइश सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे साथी हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।
1: ये फरमाइश हमें मिली है गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, आदीप। और ये एक और फरमाइश हमें मिली है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।
0: और ये हमारे साथी नजीबाबाद से नजीबाबाद सुन रहे साथियों को कहते हैं हाँ कि आप शामिल करने पूर्णा जंक्शन बस्थानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। और ये हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर।
1: निधि जी ये हमें एक और फरमाइश मिली है ग्राम नंगला उभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत और पूनम।
0: आप भी जुड़े हमारे इस कार्यक्रम से और सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, और बल्हार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का ये गीत।
1: और ये एक और फरमाइश हमें मिली है कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। आर्यनगर कोहका भिलाई से अनुरोध किया है उत्तम सिंह जंघेल, भोर मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल ने। तो निधि जी इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आई प्रोग्राम की पहली पेशकश हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
0: फिल्म का नाम है तेरे नाम और गायक स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक का। तो आइए श्रोताओं सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और इस गीत के माध्यम से जो आपने अपने साथियों से और हमसे कहा है वो सच ही है कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम का जो अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है मोहरा। पंकज दास और साधना सरगम की युगल आवाज में इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर राखी, श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रणीता सिद्धांत ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर, अर्जुन ग्वांडकर और टुक टुक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम।
3: और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू की। सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय।
2: और आप हैं हमारे साथी गणेशपुर गंजुंडवा राय उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख समा।

0: अच्छा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगता।
1: और ये फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। कस्बा बराडा, जिला अंबाला, हरियाणा से ये फरमाइश की है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्ना, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने।
0: और ये फरमाइश कर रहे हैं हमारे साथी शेरवानी स्कूल गंजुनवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: निधि जी, इसी गीत को सुनने के लिए एक और फरमाइश हमें मिली है। ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला, जिला फिरोजपुर, पंजाब से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज और शुभदीप सिंह।
0: अनुरोध क्या है अपनी पसंद के गीत को सुनने का फूलगाम निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद एम वाहिद रहमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद फाजिल ने।
1: तो निधि जी, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम सुनवा दें फिल्म मोहरा का ये गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: स्वागत है कार्यक्रम की तुम्हारा में एक बार फिर से। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए 9457078288। और अगला गीत जो हम आपको सुनवा रखे हैं उसकी फरमाइश हमारे पास पहुंच चुकी है और गीत हम आपको बताते हैं कि ये गीत है, फिल्म का नाम है शादी में ज़रूर आना। इस फिल्म से और अशित त्रिपाठी के स्वर में आप इस गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर।
3: झरझर हरियाणा से सुनना चाहते हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत मायंक भाटिया। और एक और फरमाइश हमें मिली है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा।
6: ये फरमाइश भेज रहे हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। और बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढिंगिया, कुणाल ढिंगिया।
3: बीड शहर महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें मिली है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय
6: और पीवी कुलथे
3: कुलथे। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला दरबार।

0: हमारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊ जी आलोक अग्रवाल। साथ ही ये एक और फरमाइश हमें मिली है डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और
1: महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से अनुरोध करते हैं अपनी पसंद का गीत सुनने की। रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी। और आप हैं हमारे साथी एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे। कुछ खर्चे अभी हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, है ना। हाँ, तो स्वाति और प्रयाग चौधरी भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और साथ ही अनुरोध है कि अगर आपका पसंद का गीत आप सुन रहे हैं तो अपने अलग अलग नंबर से जो मैसेज किए हैं उनको अभी ना भेजें, और अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमें और साथियों का नाम लेने में देरी होती है। संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं।
0: एक और साथी हमारे जुड़े हैं बिलराम गेट कासगंज से, मोहम्मद असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान। और ये फरमाइश हमें मिली है गांधी रोड गंड डुंडवारा से मोहम्मद आशिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद शेख, फातिमा गाजी शेख, मुन्ने सलमानी और मोहम्मद कलीम शेख।
1: और रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पे चौहान, बेबी गर्वी ने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से।
0: शाही मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से ये फरमाइश की है आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना अरफात, अदीब और कादिर चौधरी ने।
1: नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद सीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी भी जुड़े हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
0: और ये फरमाइश मिली है हमें सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान की। इसी क्रम में ये फरमाइश हमें मिली है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। और ये फरमाइश है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से।
1: और आप हैं हमारे साथी जी, लिखते हैं क्या बात है कि आपने अभी तक हमारे नाम नहीं पढ़े, लेकिन हम आपके नाम कम ढूंढ पा रहे हैं, दिल ही दिल और चाय की चुस्किया आपने भेज दिए हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है। आप हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और मास्टर जाहिद अली, और मीर सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के सदस्य। और ये हम अंतिम फरमाइश ले लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक गीत का ही समय
0: जी,
1: बचा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान स्टार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से।
0: तो निधि जी, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आई सुनवा देते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
1: और ममता अग्रवाल को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर।

श्रोताओं, ये गीत सुना आपने मिशन कश्मीर फिल्म से, और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है लावारिस। गीत रचना अनजान की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में गीत फिल्म बनफूल से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में फिल्म संगम में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: श्रोताओं, फिल्म में गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है अदनान सामी का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आकाशवाणी के नजीबा भारत केंद्र से। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल आवाजों में फिल्म एक रात से ये गीत। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और संगीत निर्देशन है चित्रगुप्त का।

सुबह पे जिस तरह शाम का

तीन देवियां। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार की आवाज में, और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर से। गीत के बोल हैं गुलजार के और संगीत है आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, हीरा पन्ना फिल्म से। गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म हीरा पन्ना से। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में एक और गीत फिल्म लाजवंती से। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत से सजाया है एस डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत सुना फिल्म लाजवंती से, और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। दिल्ली केंद्र से ही रात 9:30 बजे रिले किया जाएगा कार्यक्रम नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी।

अदबी दुनिया के तहत कलामी शायर दीपक अरोड़ा से रूबरू कराएंगे शाम 7:50 पर। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे अजय जोशी की आवाज में चंद गजलें। लू में पशुओं की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रजनीश जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय पशु चिकित्सालय नगीना में, इनसे की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और सब्जियों की देखभाल।

विविध कार्यक्रम में शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे विभा पांडे की कहानी हौसलों की उड़ान। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज क्रम है बात जुबान से। आपसे कुछ ही देर में 12:05 पर श्रोताओं के पत्रों और एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम होगा आपका पत्र मिला।

फिल्मी संडे क्रम में दोपहर 12:30 बजे आज आप सुनेंगे 1992 की फिल्म बेटा की कहानी। बाल श्रोता अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें बच्चों को जानकारी दी जाएगी

लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे अनीता सिंघल के स्वर में बुंदेलखंडी लोकगीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, आप सुनेंगे शाम 5:00।

फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे। हमारी इसी सभा में दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम एक और अनेक में, शाम 6:55 पर कार्यक्रम होगा छाया गीत, रात 8 कार्यक्रम गीत संध्या, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे रात 8:30। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका पत्र मिला मी। और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं ममता अग्रवाल और हमारे साथ हैं निधि भारद्वाज जी।
1: तो नमस्कार ममता जी, आपको और हमारे सभी सुनने वालों को आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम दोनों एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का।
0: निधि जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर अभी कार्यक्रम बस शुरू ही हुआ है और कितने सारे ये SMS हम देख रहे हैं और मैं आपके हाथ में ये एक बहुत सुंदर सी राइटिंग में पत्र भी देख रही हूँ।
1: जी हाँ, ये पत्र है, जैसे ही हम नाम लेंगे ना तो हमारे श्रोता भी पहचान जाएंगे कि ये पत्र किसका है। लेकिन जो नए श्रोता जुड़े हैं उनके लिए हम अपना फोन नंबर बता देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा 9457078288 इस नंबर पर।
0: तो निधि जी, इस पत्र में क्या लिखा है आप पढ़ेंगी?
1: हाँ बिल्कुल, ये है जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से नरेंद्र कुमार जी। और जी, ये हमारे एक ऐसे सुधीर श्रोता है जो अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में हमारे पत्रों की समीक्षा करते हैं और ये बहुत सारे पेपर
0: हैं। निधि जी, मैं कहूंगी कि मतलब समीक्षा भी बहुत शिद्दत के साथ करते हैं
1: जी। और 10 मई से कार्यक्रम को लेकर इन्होंने अभी लास्ट तक की कई तिथियों के बारे में लिखा है जिसको हम पढ़ना शुरू करते हैं
0: जी।
1: और लिखते हैं 9 मई को प्रमोद सिंह जी के ने हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। 10 मई को मनोज वर्मा जी ने वंदना श्री रामचरित मानस गान चिंतन स्वास्थ्य चर्चा खेती की बातें सूरज के साथ साथ सरीखे कार्यक्रम बखूबी प्रस्तुत हुए और उस दिन काव्य धारा क्रम में कर्मवीर सिंह का काव्य पाठ रास आया। सुहाना सफर गीत कार्यक्रम तुम्हारे मनोज वर्मा जी ने, ज्योति गौड़ जी ने भली भांति प्रस्तुत किए। इसके अलावा ये लिखते हैं कि साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे कार्यक्रम में ज्योति गौड़ जी ने पूर्ण मनोयोग से हिना फिल्म के कथानक का जिक्र करते हुए प्रस्तुत किया। राशि त्यागी श्रेया विश्वास ने युवाणी कार्यक्रम की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसका मतलब सभी कार्यक्रमों के लिए समीक्षा करते हैं। जितेंद्र कुमार सुवेंद्र सिंह झुमरू ने फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बताया।
0: निधि जी, लगता है कि कितने ध्यान से और कितनी लगन से ये नरेंद्र मेहता जी हमारी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: हाँ,
0: और केवल सुनते ही
1: जी,
0: केवल सुनते ही, ये शायद मेरठ से है ना?
1: हाँ, नरेंद्र कुमार जी कैसे हमारे साथी हैं जिन्होंने

0: हर तिथि को बहुत प्यार से लेकर अन्य केंद्रों की भी बात होती है इसमें, लेकिन हम अपने नजोबाद हाँ। केंद्र की बात करेंगे।
1: और निधि जी, मैं एक और खास बात देखती हूँ कि जैसे हमारे कुछ श्रोताओं के हमें पत्र मिलते हैं तो वो कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, लेकिन इनके पत्र में शायद ही हमारे केंद्र से प्रसारित कोई ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसका जिक्र ना होता हो।
0: 12 मई के कार्यक्रम का भी जिक्र करते हैं कि चरणजीत जी ने वंदना सूरज के साथ साथ कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। नेहा शर्मा जी के संग सुहाना सफर गीत तुम्हारे कार्यक्रम पसंद आया। इसके अलावा 13 मई को नमित राज जी का भक्ति संगीत का कार्यक्रम की बात करते हैं। घर संसार कार्यक्रम भी इन्होंने लिखा है कि नीतू जी ने बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया। माइग्रेन की समस्या के बारे में तनप्रीत कौर आयुर्वेदाचार्य से डॉक्टर निधि अरोरा से कार्यक्रम में जो बातचीत की गई वो इन्हें पसंद आई। कृषि जगत अनुभव की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन पर जो कार्यक्रम आते हैं वो पसंद आते हैं। इसके अलावा मैं इसलिए इसको पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत मनयोग से इन्होंने लिखा है और हम इसको बहुत संक्षिप्त करना चाहते हैं, तब भी कहा हमें पढ़ना ही पड़ेगा
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है कि 14 मई का ताहिर महमूद जी का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। सारे ही कार्यक्रम, चाहे वो स्वास्थ्य चर्चा हो, सूरज के साथ साथ हो, बखूबी पसंद आए। और सुहाना सफर कार्यक्रम भी ताहिर महबूब जी और महवश लेकर आए, वो पसंद आए।
1: निधि जी, मैं बीच में कुछ कहना चाहूंगी नरेंद्र कुमार जी से और बाकी श्रोताओं से भी कि जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों की और प्रस्तुतकर्ताओं की प्रशंसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये हौसला अफजाई हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है अपने कार्यक्रमों को और अच्छा करने के लिए। लेकिन हम अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें कार्यक्रम में कहीं कुछ कमी लगती है या किसी और तरह से हम अपने कार्यक्रम को कुछ और बेहतर बना सकते हैं तो भी वो अपने सुझाव समय समय पर हमें दें। उनके सुझावों का हमारे कार्यक्रम में पूरी तरह से स्वागत होगा।
0: इन्होंने लिखा कि बंदी नाटक जो माधवी भरतवाल जी का लिखा हुआ था उसमें वो नाटक अच्छा लगा और नाटक के प्रतिभागी कलाकारों को बधाई। हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम को आलोक जी और गंगाराम हिमांशु रंजन ने बखूबी प्रस्तुत किया। इसके अलावा ये कहते हैं 16 तारीख का कार्यक्रम बहुत सुंदर इन्हें लगा। फरीना जी का कार्यक्रम, नमित जी का कार्यक्रम, चरणजीत जी का कार्यक्रम, 17 तारीख के कार्यक्रम की बात ममता अग्रवाल जी की करी तो कहते हैं कि वंदना, श्री रामचरित मानस, गान, चिंतन, सूरज के साथ साथ सभी के कार्यक्रम बहुत ही सुंदर प्रस्तुत है। और आपका पत्र मिला कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम ममता अग्रवाल जी और अलका जी ने जब प्रस्तुत किया तो बहुत पसंद आया। फिल्मी संडे में अलका सिंह की जो फिल्म थी, महेश किशोर जी के संगीत से सवरी सनम बेवफा का कथानक बहुत पसंद आया। अभी निधि जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसको पूरे पत्र को किस तरह से पढ़ें।
1: देखिए निधि जी, हम कहेंगे कि नरेंद्र कुमार जी से हम ये अनुरोध भी करेंगे कि नाराज ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे और श्रोता भी हमें एक के बाद एक मैसेज भेज रहे
0: हैं कि 17 तारीख का कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया और कुछ फिल्मों के नाम भी लिखते हैं कि वो हमें अच्छे लगते हैं, आप उनको सुनवाया करें।
1: बिल्कुल, बारी बारी से नरेंद्र कुमार जी, हम जो आप फिल्मों की फरमाइश करते हैं कोशिश करते हैं कि उन फिल्मों के गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनवाएं। आपने हमें इतना खूबसूरत सा इतने प्यार से पत्र लिखा है उसके लिए बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और इसी में अब जो श्रोता सोच रहे हैं कि ये सच में क्या करते हैं तो उनको बता दें कि 18 मई के कार्यक्रम नेहा शर्मा जी की इन्होंने तारीफ किया है, हिमांशु रंजन की, पुनः साप्ताहिक कार्यक्रम की, 9 मई की नमित राज जी के कार्यक्रम की, निधि भारद्वाज जी के कार्यक्रम की और श्वेता भट्ट जी का कार्यक्रम, जितने भी उद्घोषक अभी तक आए हैं। इसके अलावा मुझे याद है जरा जरा कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि शोभी शर्मा जी ने अवकाश प्राप्त उद्घोषक एस के नौटियाल साहब से जो बातचीत की
1: जी
0: वो हमें बहुत पसंद आई। और यशोदा डबराल जी का कार्यक्रम में सहयोग रहा। 21 मई के कार्यक्रम की भी प्रशंसा है, 22 मई के फिर प्रशंसा और अलीना सना युवाणी कार्यक्रम की प्रशंसा आपने की है। बहुत जो है
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम आपसे कहेंगे कि इसी तरह से हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते रहिए और हमारे केंद्र से जुड़े रहिए। निधि जी, ये अगला मैसेज
0: हमारे साथी का है जिनको हम लेना चाहते हैं कि आप लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा नमस्कार। ग्राम चमरौवा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश से ब्रजेश राज मिस्त्री, किशन भाई, सोमपाल सिंह, सोमपाल भाई, वैष्णवी, दिव्यांश, अनुज, बबलू, महेंद्र, मलखान और उनके बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपनी पत्रिका का इंतजार कर रहे हैं। हेलो नजीवा।

0: आवाज़ या हेलो फरमाइश में तो फोन लगता ही नहीं, क्या कहना। फिर कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। कहना चाहते हैं कि कई वर्षों से, 30 वर्षों से लगभग कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका पत्र मिला। कार्यक्रम का समय अगर हो सकता है थोड़ा बढ़ा दीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा पत्रों को हम शामिल कर सकेंगे। देखिए, सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है
1: जी। सबसे पहले तो ये ब्रजेश सिंह जिला संभल से, जिन्होंने हमें ये पत्र लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि हेलो फरमाइश में जब इन्हें फोन नहीं लगता तो इन्हें निराशा होती है। लेकिन देखिए, मुझे निधि जी इनकी ये बात कितनी अच्छी लग रही है कि ये कोई शिकायत शिकवा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार जरूर कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, उसी क्रम में आज सबसे पहले शायद हम एसएमएस में बात करें तो इन्हीं का एसएमएस हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इन्होंने जो ये कार्यक्रम का समय बढ़ाने की बात कही है, तो देखिए ऐसा होता है कि केंद्र से हर क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रसारित करना जरूरी होता है, इसी में आकाशवाणी की गरिमा भी है। तो हर कार्यक्रम का अपना एक निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जिस कार्यक्रम का जो समय निश्चित किया गया है, फिलहाल तो देखिए हम उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर भी अपने श्रोताओं के अनुरोध को हम अपने अधिकारियों तक जरूर पहुंचाते हैं, या वो कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे। और भविष्य में कभी भी ऐसी कोई संभावना होती है कि जिस कार्यक्रम को हमारे श्रोता ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी समय सीमा बढ़वाना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसा होगा, तो हमारे अधिकारी इस चीज़ के बारे में विचार करेंगे और ये समय सीमा जो है बढ़ा दी जाएगी।
0: ये अगला पत्र हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान बिट्टू भैया, हिना कौसर का। लिखते हैं कि प्यार भरा हम आपको सलाम करते हैं, कैसे हैं आप? तो हम कहेंगे हम सही हैं,
1: बिल्कुल। और दुआ करते हैं कि आप भी सही, हमारे सभी श्रोता बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें।
0: लिखते हैं कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। 30 मई का गीत तुम्हारे कार्यक्रम, मनोज वर्मा जी का, सदर जैदी जी का पसंद आया, जिंदगी लाइव सदर जैदी ने पेश किया, बहुत अच्छा था। गीत आपके नाम में जो उज्मा और सिमरन कौर जी ने पेश किया, बहुत पसंद आया। 29 का हेलो नजीबाबाद और रात के हम सफर शिवा शुक्ला जी ने पेश किया, बहुत पसंद आया। 27 तारीख का गीत तुम्हारे मनोज वर्मा जी का, रिमझिम बलोनी जी ने पेश और साथ में पेश किया, बहुत पसंद आया। लेकिन और आगे भी लिखते हैं, 26 तारीख का गीत तुम्हारे जो रविकांत वर्मा जी और ज्योति गौर जी ने पेश किया और आपकी फरमाइश जसवंत सिंह ने पेश की, वो बहुत पसंद आई। 25 तारीख का गीत तुम्हारे ताहिर महमूद जी और लोकेंद्र जी ने, और मुझे जो याद है जरा जरा कार्यक्रम भी पसंद आया। आप सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप श्रोताओं को क्यों नहीं बुला रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमें भी अपने विचार रखने के लिए मौका दीजिएगा, बारी बारी से बाकी लिसनर को भी बुलाया जाए। मुझे याद है जरा जरा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो जो ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं वक्कार फरीदी जी और इनके साथी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एसएमएस लिखने के लिए। निधि जी, शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा होता होगा जिसमें हमें इनका एसएमएस नहीं मिलता।
0: बिल्कुल,
1: हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता इस तरह इतनी तल्लीनता से हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी हमें भेज रहे हैं। जो हमारे श्रोता, देखो अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग तिथि वार और प्रस्तुतकर्ताओं के नाम से जो ये तारीफ लिखते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि प्रस्तुतकर्ता अपने नाम सुनकर और जो उनकी मेहनत होती है कार्यक्रम की, वो वसूल हो जाती है एक तरह से। उन्हें कितनी खुशी होती है ये सुनकर कि हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो श्रोताओं को पसंद आया। जो बात कही है इन्होंने कि कार्यक्रम

लगता है कि प्रस्तुतकर्ता अपने नाम सुनकर और जो उनकी मेहनत होती है कार्यक्रम की वो वसूल हो जाती है एक तरह से, उन्हें कितनी खुशी होती है ये सुनकर कि हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो श्रोताओं को पसंद आया। जो बात कही है इन्होंने कि कार्यक्रम

0: देश की सेवा करते हुए 90 सुनहरे बेमिसाल साल पूरे हो जाएंगे और कल 10 वे दशक में हम प्रवेश करने लग जाएंगे। लगता है कल की बात है कि इसके ऑल ओवर इंडिया के सभी अधिकारी, टेक्निकल स्टाफ, प्रोग्राम प्रेजेंटर, आकाशवाणी मैनेजमेंट को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं। शिकायत वही पुरानी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करना, सुझाव सैटरडे और संडे की नाइट में भी मैसेज बस प्लस मैसेज वाले प्रोग्राम कर दें या फिर दिन में कर दें। और लास्ट वीक धर्मेंद्र जी, ज्योति गौर, अनुपम जी, शिवा शुक्ला जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम और सॉन्ग पेश किए। चरणजीत जी, साइकिल पर प्रोग्राम के अच्छा लगा, साइकिल फिर जिंदा हो गई है, जागरूक श्रोता पर्यावरण का पर्यावरण बहुत सार्थक रहा, पर्यावरण पे बातचीत हुई इसमें। और क्या जिंदगी लाइव में हॉलीडेज में बच्चों के लिए करें, इस बात से सभी को जानकारी मिली। और सुबह से निधि जी और ममता अग्रवाल जी ने ताबेदारी ले रखी है और हम भी तैयार हैं अपनी प्रतिक्रिया लेकर आपके दरबार में हाजिर हैं। आपको हम झुककर सलाम करते हैं, बस थैंक्स। तो बहुत अच्छी बात करते करते बड़े विनम्र हो गए हमारे अनिल विनोचा जी।
1: देखिए अनिल विनोचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना मतलब खूबसूरत से शब्दों में ये हमें मैसेज लिखा है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लिख रहे हैं कि 90 वर्षों का जो ये स्वर्णिम सफ़र है, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र था और ये सुनते सुनाते कैसे बीत गया। आज हमने निधि जी, अगर आपको याद हो, सुहाना सफर का भी यही जिक्र किया था कि पता ही नहीं चला कि कब ये 9 दशक का सफ़र बीत चला है। और दूसरी बात जो लिखते हैं कि
0: सैटरडे और संडे में
1: जी, सैटरडे और संडे के कार्यक्रमों की, तो देखिए हम इस बारे में कहना चाहेंगे कि पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना। देखिए शनिवार को हम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं और रविवार को भी, आज रात को भी 10 बजे रिले किया जाएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो ये शास्त्रीय संगीत और संगीत सभा का जो कार्यक्रम है ये सुनना चाहते हैं, इसमें जो अलग अलग राग उन्हें सुनने को मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो देखिए सभी श्रोताओं की पसंद और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे विशेष कार्यक्रम होते हैं जो हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से या लखनऊ केंद्र से रिले करते हैं, तो उन कार्यक्रमों की समय सीमा बिल्कुल निश्चित होती है जिसमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो कार्यक्रम बिल्कुल पूरे समय के लिए हमारी बाध्यता होती है कि वो देना ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए जो आपने शनिवार और रविवार को फिल्मी गीतों के कार्यक्रम की बात की है तो उसके लिए तो अभी ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में अगर कभी कोई चेंज होगा तो जरूर आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा।
0: और निधि जी सभी की प्रशंसा की है उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी लोग हैं वो उसको सुन रहे होंगे,
1: हौसला अफजाई जो इन्होंने की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए, हमें पत्र लिखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अगला जो हमारे पास पत्र है वो व्हाट्सएप से ही है और लिखते हैं, आपका पत्र मिला प्रस्तुत करने वाली बहन को प्रकाश चंद, मंजू देवी और कनुप्रिया उज्जवल कुमार की तरफ से नमस्ते। हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं और सूरज के साथ साथ युववाणी, कृषि जगत, हेलो नजीबाबाद, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम दोबारा से शुरू किया, हमें बहुत खुशी हुई है और आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड ग्राम सैंधी जिला पौड़ी गढ़वाल से प्रकाश चंद जी।
1: जी प्रकाश चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में हमें SMS लिखने के लिए। लिखते हैं कि सूरज के साथ साथ युववाणी, कृषि जगत कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। तो देखिए हम बताना चाहेंगे कि सूरज के साथ साथ कार्यक्रम निधि जी हमारे केंद्र से वाकई बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम जा रहा है जिसमें कि ज्ञानवर्धक जो बातें हैं वो बताई जाती हैं,
0: साथ ही तिथि विशेष क्रम होता है
1: बिल्कुल, और साथ ही श्रोताओं का मनोरंजन भी किया जाता है
0: जी।
1: क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के मनोरंजन को तो बिल्कुल नहीं भूलते,

0: साथ ही इन्होंने बात की है हेलो लोक मंजरी की। तो ये हमारा कार्यक्रम जो है वो कृषि जगत की एक श्रृंखला है, लोक मंजरी कार्यक्रम, जिसमें कि श्रोता अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनते हैं। तो आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है?
1: युवाणी भी इन्हें बहुत
0: युवाणी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। और हेलो नजीबाबाद का इन्होंने जिक्र किया है, जो हमारे श्रोताओं का मैं तो कहूंगी कि बेहद पसंदीदा कार्यक्रम है। और क्यों है ये तो सभी जानते हैं, है ना, हम कह सकते हैं कि जग विदित है क्योंकि श्रोता इसमें अपनी कॉल के माध्यम से बात करते हैं, अपने मन की बात हमसे कहते हैं, और केवल हमसे ही नहीं कहते बल्कि दूसरे श्रोताओं तक भी साझा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका पत्र देखकर, इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।
1: ये हमारे अगले साथी हैं जिन्होंने लिखा है, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर।
0: क्या लिखते हैं?
1: लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, बाद में उनकी देखभाल करें, पानी को बर्बाद ना करें और बाजार में कपड़े का थैला लेकर जाएं। इन्होंने अपने विचार लिख
0: अच्छा
1: दिए हैं
0: इन्होंने विचार,
1: और जहाँ तक हम समझ
0: है।
1: रहे हैं कार्यक्रमों को ये बहुत पसंद करते हैं,
0: पसंद कर रहे हैं
1: और मैसेज देना इनका एक इस समय एक इच्छा रही
0: जी
1: कि इस बीच में आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, कार्यक्रमों की प्रशंसा के साथ साथ जो गर्मी का मौसम है उसके
0: बिल्कुल,
1: लिए
0: बहुत ही अच्छा इन्होंने सुझाव दिया, एक संदेश दिया है हमारे सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पीने का पानी ढक कर रखें और सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं। देखो आजकल निधि जी गर्मी का मौसम है और मच्छर वास्तव में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मच्छर से बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं।
1: हाँ,
0: तो ये हमें सजग कर रहे हैं इन सभी बातों से। और सबसे मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लग रही है, लिखा है कि बाजार में कपड़े का थैला लेकर जाएं, बिल्कुल नो प्लास्टिक, है ना।
1: हाँ, पर्यावरण तो, की रक्षा हम करेंगे तभी हम उसका उपयोग कर सकेंगे।
0: देखिए प्रकृति अनमोल है और उसको बचा कर रखना हम सबका कर्तव्य है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए निश्चित है कि हम प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ना करें और उसको प्रयोग में ना लाएं, इसीलिए बाजार में कपड़े का थैला लेकर जाएं। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी। और एक और बहुत अच्छी बात कि घर से जब बाहर जाएं तो घर की सारी बिजलियां बंद करके जाएं। बिल्कुल, देखिए बिजली न केवल हमें रोशनी देती है निधि जी, बल्कि हमारे सभी कामों में बहुत ज़रूरत बन गई है। तो जो चीज़ हमारी इतनी ज़रूरत की है निश्चित ही हमें उसका संरक्षण भी करना चाहिए। और संरक्षण करने का ये एक बहुत ही इन्होंने आसान और सही तरीका बताया है कि थोड़ी सी लापरवाही से अगर हम बचें कि जब भी बाहर निकलें या कमरे में अगर हम नहीं बैठे हैं, हम बाहर गए हैं, तो बिजली बंद करें, पंखा बंद करें और बिजली बचाएं।
1: बिल्कुल, और ये काम हमें सब जगह करना है, चाहे अपना घर हो या फिर जहां हम काम करते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, एक और अगला पत्र हमें मिल गया है। ये है जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यशदिका लिखते हैं। नजीबाबाद केंद्र के सारे ही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, कोई शिकायत नहीं।
0: क्या
1: है,
0: बात है निधि जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि इन्होंने तो चार शब्दों में अपना पत्र खत्म कर दिया। हाँ, और मतलब उसी में सब कुछ लिख भी दिया। हम कह सकते हैं कि गागर में सागर कि इन्हें कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब ये हमारे केंद्र के जितने भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उन सभी से संतुष्ट हैं
1: और
0: पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी भी कार्यक्रम में इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इनके सुझाव की जरूरत है तो हमें जरूर लिखें। हमारे सभी श्रोताओं के सुझाव का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं।
1: ये है हमारे साथी स्नेह रेडियो श्रोता संघ गांव मिर्तजा
0: जी,
1: जिला महोबा यूपी से, भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश, कुमार भास्कर और बेबी आरोही
0: जी।
1: लिखते हैं सम्माननीय ममता दीदी, निधि दीदी को तहे दिल से नमस्कार।
0: आपके
1: द्वारा प्रस्तुत फिल्मी संडे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। एक फिल्म की कहानी लेकर उसको सुनाया जाता है, आनंद आ जाता है। कार्यक्रम आपका पत्र मिला तो हमारा बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। फिल्मी कार्यक्रम आपकी फरमाइश बहुत मनमोहक है, जिनमें गाना बहुत ही मधुर होते हैं, सुने जाते हैं। दैनिक कार्यक्रम वंदना तो मन को खुश कर देता है और धार्मिक प्रवृत्ति का संदेश दे जाता है। अंत में पुनः नमस्कार, शेष फिर अगले
0: बिल्कुल अगले सप्ताह। देखिए इन्होंने बात की है फिल्मी संडे कार्यक्रम की, तो वास्तव में वो हमारे सभी श्रोताओं को कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम रविवार के दिन ठीक 12:30 बजे बस अब से कुछ ही पलों में वो कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं, जिसमें हम हर बार एक नई फिल्म की कहानी लेकर आते हैं। हेलो नजीबाबाद की बात की है तो वो हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से इन्होंने वंदना कार्यक्रम की बात की है, तो निश्चित तौर पर जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो वास्तव में हमारे मन को एक शांति देने वाला कार्यक्रम होता है। तो इस तरह से इन्होंने जिन कार्यक्रमों की तारीफ की है वास्तव में बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, और ये हमारे कार्यक्रम में जुड़े इन्होंने हमें SMS लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निधि जी शायद अब हम कोई और SMS तो नहीं ले पाएंगे,
1: हाँ, लेकिन अभी हमारी लाइन में बहुत सारे रह गए हैं।
0: तो हम कहना चाहेंगे कि अगले रविवार
1: हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी निधि भारद्वाज
0: और ममता अग्रवाल को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत है फिल्मी संडे।

0: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೆ
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्मी संडे में। और आज का ये अंक लेकर आपके साथ मैं हूं ममता अग्रवाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी एक फिल्म की कहानी से। इसी क्रम में आज आप सुनेंगे 1992 में रिलीज हुई एक ऐसी हिंदी फिल्म की कहानी जो एक पारिवारिक फिल्म होने के साथ साथ रिश्तों, विश्वास और लालच के बीच संघर्ष की कहानी थी, जिसने दर्शकों के दिलों पर जो गहरी छाप छोड़ी थी उसका रंग आज भी वैसा ही नजर आता है। साथियों, अब आपके दिलो दिमाग में 1992 की कुछ फिल्मों के नाम जरूर आ रहे होंगे, तो आइए इस इंतजार को खत्म करते हैं और जिक्र करते हैं आज की फिल्म का। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे हिंदी फिल्म बेटा की कहानी, जो 90 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था इंद्र कुमार ने और मुख्य भूमिकाओं में नजर आई अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी व अनुपम खेर। फिल्म के सुपरहिट गीतों की शब्द रचना समीर की थी और मधुर संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक भोले भाले और नादान बच्चे राजू से, और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। राजू की भूमिका निभाई है अनिल कपूर ने। राजू ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया है। उसके पिता प्रेम, जिसकी भूमिका अदा की है आकाश खुराना ने, राजू को बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसकी माँ की कमी को पूरा नहीं कर पाते। राजू के पिता प्रेम के पास बहुत जमीन जायदाद और संपत्ति है, लेकिन इस सब के बीच राजू अपनी खुशी ढूंढ नहीं पाता। वो हर वक्त अपनी माँ का ही इंतजार करता है।
2: माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। माँ, तुम्हारा राजू, तू मुझे पहचान गई। माँ, माँ तू कैसी है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, तुम भगवान से छुट्टी लेके मेरे पास आ जाओ। माँ, तुम आ जाओ। फिर क्यों नहीं आ सकते? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? माँ, लो मैं कार पकड़ता हूँ। अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा, तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ।
1: माँ की इस कमी को पूरा करने के लिए राजू के पिता दूसरी शादी करके लक्ष्मी देवी को घर ले आते हैं। लक्ष्मी देवी के रूप में इस सौतेली माँ की भूमिका में है अरुणा ईरानी। राजू अपनी माँ को पाकर बहुत खुश है, जैसे उसे सारा जहां मिल गया हो।

0: लक्ष्मी राजू को बेशुमार प्यार करने का झूठा दिखावा करती है, लेकिन वो वास्तव में बहुत लालची और बेहद स्वार्थी है। उसका असली मकसद परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना होता है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो राजू के पिता से शादी करती है।
1: मेरी कोख के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा। देखना भैया, मैं राजू को अपने बस में इस तरह करूंगी कि आज के बाद वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, जिएगा तो माँ कहेगा।

0: और मरेगा तब भी माँ कहेगा।
1: लक्ष्मी देवी नहीं चाहती कि राजू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। वो उसे अनपढ़ रखती है जिससे वो बड़ा होकर जमीन जायदाद के बारे में कुछ समझ ना पाए। राजू अपनी माँ को बेहद प्यार करता है और उसी प्यार में वो माँ की चालों को समझ नहीं पाता। वो माँ की हर बात मानता है, उस पर अटूट विश्वास रखता है। राजू अपनी माँ के कहने पर बंजर जमीन पर भी अपने खून पसीने की मेहनत से लहलाती हुई फसलें उगा देता है।
2: माँ तू खुश है ना? देख देख कैसे खेत लहरा रहे। अरे ये तो बंजर जमीन थी, अगर तूने कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता। माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने।
1: कुछ ही दिनों में लक्ष्मी देवी का भाई तोताराम, जिसकी भूमिका में है अनुपम खेर, और उसकी पत्नी भी लक्ष्मी देवी के घर में आकर रहने लगते हैं। अब क्या था, अब तो तीनों मिलकर पूरे घर पर अपना कब्जा करने की कोशिश में हैं। यहाँ तक कि राजू के पिता को पागल घोषित कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। समय बीतता है, एक दिन वो अपनी माँ के साथ रिश्तेदारी में किसी की शादी में गांव जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की से। ये लड़की कोई और नहीं, सरस्वती है, जिसका किरदार निभाया है माधुरी दीक्षित ने। राजू को एक ही नजर में सरस्वती से प्रेम हो जाता है और वो हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता है।

0: श्रोताओं, ये गीत दर्शकों में इतना लोकप्रिय हुआ था कि माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल कहा जाने लगा और यह गीत आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गीतों में से गिना जाता है। राजू की माँ अपने भाई तोताराम के साथ मिलकर हर वो दांव खेल रही है जिससे सारी संपत्ति उसकी हो जाए। वो राजू के भोलेपन का पूरा फायदा उठा रही है और उसकी शादी करवाना चाहती है किसी अनपढ़ लड़की से जिसे पूरी तरह वो अपने नियंत्रण में रख सके।
1: समझ गया बहना, समझ गया। तुम ही अनपढ़ गंवार बहू सिर्फ इसलिए ला रही हो ताकि जहाँ जहाँ चाहो अंगूठा लगवा लो राजू की तरह और सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लो। वाह बहना वाह।
0: लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राजू सरस्वती से शादी करके उसे घर ले आता है।
2: अपनी माँ से आशीर्वाद नहीं लेगा?
3: माँ
2: ठीक है,
3: माँ तू इस शादी से खुश है ना?
2: अपने बेटे का घर बस जाए और माँ खुश ना हो, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है पिता।
3: सच माँ? देखा सुरु, मेरी माँ कितनी अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमसे नाराज नहीं होगी। बस माँ तुम खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए।
0: लक्ष्मी देवी इस शादी से खुश होने का दिखावा करके राजू और सरस्वती को आशीर्वाद तो देती है लेकिन मन ही मन एक नया जाल बुनना शुरू कर देती है। सरस्वती एक बहुत ही समझदार, साहसी और सच्ची लड़की है। वो बहुत जल्द लक्ष्मी देवी के इस नकली प्यार और चालाकी को समझने लगती है।
2: तुम नहीं जानते, इस घर के बुजुर्ग अपने स्वार्थ के लिए मुझे और राजू को अलग कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं हमारी शादी, मगर मैं उनकी आरजू कभी पूरी नहीं होने दूंगी।
0: सरस्वती अपने पति को सच्चाई बताने की कोशिश करती है लेकिन राजू अपनी माँ पर अंधा विश्वास करता है और उसकी किसी भी बात को सच नहीं मानता। हालांकि वो सरस्वती को बहुत प्यार करता है और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है।

सरस्वती एक संस्कारवान लड़की होने के नाते घर की बहू के रिश्ते की गरिमा को बखूबी निभाने की कोशिश कर रही है। उसे जब पता चलता है कि राजू के बाबूजी को पागल करार देकर एक कमरे में बंद कर रखा है, तो वो उनसे मिलने जाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनका पूरा

0: का मान सम्मान करती है। लक्ष्मी देवी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन सरस्वती इसकी जरा भी परवाह नहीं करती। इसके बाद फिल्म में शुरू होता है घर के अंदर होने वाला एक भावनात्मक संघर्ष। एक तरफ सौतेली माँ का लालच और चालाकी, तो दूसरी तरफ बहू की सच्चाई व परिवार को बचाने की कोशिश।
1: जब से मैं इस घर में आई हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका। तू क्या चीज है? इसीलिए मेरी एक सलाह याद रखना कि इस घर में खाना खाने के सिवाय कभी मुंह मत खोलना, वरना तेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी।
2: मैं भी अपने सुहाग की कसम खाती हूँ कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी।
0: लक्ष्मी देवी कदम कदम पर हर वो चाल खेल रही है जिससे राजू और उसकी पत्नी में गलत फहमियां पैदा हो जाए और वो साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना कर सरस्वती को घर से निकालने का षड्यंत्र रचती है। लेकिन सरस्वती पूरा धैर्य रखते हुए समझदारी का परिचय देती है। उसे कई बार बहुत सी मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और राजू को अपनी माँ की असलियत समझ आने लगती है। लक्ष्मी देवी जमीन जायदाद के लालच में इतना गिर जाती है कि राजू के होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश के लिए सरस्वती को दूध में जहर मिलाकर देती है। घर की नौकरानी के बताने पर सरस्वती वह दूध पीने से मना कर देती है, लेकिन राजू उस दूध को पी लेता है ये साबित करने के लिए कि उसकी माँ पर लगाया गया इल्जाम गलत है। अब होता क्या है, दूध पीते ही राजू की हालत खराब होने लगती है और तब उसे अपनी माँ की घिनौनी हरकत पर विश्वास हो जाता है। वो अपनी सौतेली माँ का असली रूप पहचान लेता है।
3: माँ, इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है, लेकिन मैंने माँ के अलावा और कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना। बोलो माँ, फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने बस इतना कह दिया होता, देख राजू, मुझे तेरी सारी जायदाद चाहिए, यह अंगूठा लगा दे, तुम्हारी कसम माँ, मैं अंगूठा काट कर दे देता। अगर तुम कहती तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख देता। फिर तुमने ये सब क्यों किया माँ?
0: सरस्वती आधी रात आंधी तूफान की परवाह न करते हुए डॉक्टर को बुलाकर लाती है और किसी तरह राजू की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब लक्ष्मी देवी को अपनी घिनौनी हरकत पर पछतावा होता है, वो अपनी ही आंखों में गिर जाती है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसकी क्रूरता ने उसे कितना नीचे गिरा दिया है। राजू अपनी सारी संपत्ति अपनी माँ को सौंप कर सरस्वती के साथ घर छोड़ने का निश्चय कर लेता है, लेकिन लक्ष्मी देवी की आत्मा उसे कचोटती है और वो जायदाद के कागजों को फाड़ कर कहती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो सिर्फ उसका बेटा राजू।
4: मैं जानती हूँ बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ, जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन अपनी माँ को छोड़ के बच जा बेटा। ये जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा, मेरा राजू चाहिए, मेरा बेटा चाहिए।
0: राजू की ईमानदारी और सरस्वती की समझदारी और धैर्य की वजह से एक परिवार बिखरने से बच जाता है।

श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्मी संडे का ये अंक संपन्न होता है। अगले रविवार दोपहर 12:30 बजे एक और फिल्म की

0: में आपने सुनी 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा की कहानी। फिल्मी संडे कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। श्रोताओं, आपको एक बार याद दिला दें, रिश्ता ये खास है आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:00 बजे। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1:00 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी TDP ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और TDP सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने IDFC फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेट्रोलॉजी सिस्टम के तहत खुरदनी तेल के लिए मियारी पैकेजिंग भी नाफिज की है। इससे मार्केट में ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आएगी। सार्फिन के उमूर के महकमे ने खुरदनी तेल और घी के खालिस मकदार और मियारी पैक साइज का तयन करने के लिए मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार में तरमीम की है। माहौलियाती तहफ़ और ईंधन की बचत का पैगाम देते हुए जिला कोर्ट मान लखनऊ के अदालती अफसरान ने कल साइकिल मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं हमीरपुर में यौम आलमी साइकिल के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसे माहौलियात के तहफ़ का पैगाम दिया गया। वहीं सुल्तानपुर में आज माहौलियात के तहफ़ और अवामी बेदारी के मकसद से मुनक़द माहौलियात मैराथन मुकाबले का इफ्तिताह पर्यावरण पार्क से किया गया। घरेलू गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में 29 रुपए का इजाफा किया गया है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 रुपए हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग खुश व स्वस्थ रहें। बच्चों, अच्छी सेहत के लिए खुश व स्वस्थ रहना दोनों बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको अच्छा व पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पर कुछ बच्चे खाना खाने में मम्मी को बहुत परेशान करते हैं, और कुछ बच्चे तो खाने की बर्बादी भी बहुत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे भारत देश में भी अन्न को बहुत सम्मान दिया जाता है, हम इसे भगवान के समान मानते हैं। इसलिए जब भी खाना मिले हमें उसका आदर करना चाहिए और उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बच्चों, हर साल हम 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इसका मतलब है ऐसा भोजन जो साफ सुथरा, ताज़ा और सुरक्षित हो, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बच्चों, हमारी संस्कृति भी हमें यही सिखाती है। घर में खाना बनाने से पहले रसोई साफ की जाती है, खाने से पहले हाथ धोए जाते हैं और भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। बच्चों, ये परंपराएं सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि हमें स्वच्छता और भोजन के सम्मान का संदेश भी देती हैं। और बच्चों, देखें ना, किसान बहुत मेहनत करके खेतों में अन्न उगाते हैं, इसलिए हमें भी उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। हमें एक एक दाने की कीमत समझनी चाहिए। बच्चों, याद रखिए कि अन्न का सम्मान करेंगे, स्वस्थ और मजबूत बनेंगे, भारत की संस्कृति अपनाएंगे, तभी खुशहाल देश मनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारी जानकारी, प्यारे प्यारी बातें, प्यारी कहानी, गीत, और लाते हैं आप बच्चों की प्यारी प्यारी बातें कार्यक्रम बालमुख से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम बालमुख। बच्चों, बालमुख में आप सबका स्वागत है। अरे भाई, आज तो हमारे बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
1: दीदी, छुट्टियां जो पड़ गई हैं।
0: अच्छा, तो इसलिए खुश हैं कि छुट्टियां पड़ गई हैं और पढ़ना ना पड़े। तो चलिए आज बच्चों से यही पूछते हैं कि वो छुट्टियों में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले भाभी से बात करते हैं कि जैसे भाभी कह रही हैं कि छुट्टियां पड़ गई हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है इनका, तो इन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी है?
1: दीदी, सबसे पहले हम अपनी नानी के जाएंगे, फिर उसके बाद अपने मामा के जाएंगे, क्योंकि वो देहरादून में रहते हैं और वो हमें घुमाने भी ले जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग भी कराएंगे।
0: अच्छा, तो आप पहले नानी के यहाँ जाएंगी, फिर मामा जी के यहाँ जाएंगी, जहाँ शॉपिंग करेंगी। भाई, देहरादून तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भाभी एक बात बताइए, आप पढ़ाई नहीं करेंगी क्या छुट्टियों में?
1: दीदी, मैं अपने कजन्स के साथ पढ़ाई करूंगी, मेरे को हॉलीडे होमवर्क मिला है। क्योंकि
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाभी घूमेंगी भी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करेंगी। तो भाभी, आप हमारे दोस्तों को कुछ सुनाना चाहेंगी?
1: जी दीदी, तरुअर हम धरा के, श्रृंगार हम धरा के, जीवन है हम धरा के, यौवन वसुधर आके, पाला है आंधियों ने निज गोद में खिलाकर, तुम क्यों गिरा रहे हो हमको हिला हिला कर, खगकुल के बसेरे छाया के बंधुवर हैं।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई भाभी ने। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे साथी से बात करते हैं कि भाई उन्होंने छुट्टियों में क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। तो आइए चलते हैं केशव से बात करते हैं कि केशव ने छुट्टियों को लेकर क्या क्या प्लानिंग करी है।
2: मेरी बुआ यहीं पर आएंगी, मेरे पापा ने कहा है कि हम बुआ के साथ ही कहीं घूमने जाएंगे।
0: तो केशव, पापा ने बताया है कि बुआ के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे?
2: हम हरिद्वार, कोटद्वार और हो सका तो हम मसूरी भी जाएंगे।
0: तो भाई केशव हरिद्वार, मसूरी और कोटद्वार सब जगह घूमने जाएंगे। तो केशव, आप बताइए, आप अपना हॉलीडे होमवर्क किस तरह से कंप्लीट करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी बुआ आएंगी, तो जाहिर सी बात है आप बुआ के साथ मस्ती करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे?
2: मेरी बुआ टीचर हैं, तो मैं उनके साथ सारा हॉलीडे होमवर्क मिलकर कंप्लीट कर लूंगा।
0: बुआ टीचर हैं भाई केशव की। तो केशव, आप भी हमारे बच्चों को कुछ सुनाना चाहेंगे?
2: मैं कविता सुनाना चाहूंगा। मैं हूँ किताब, जो तुम भी मुझसे पूछोगे मैं दूंगी उस सब का जवाब। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, ऊपर रहा डाली पर लिखकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता, रोना फूल को ना आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई केशव ने। चलिए अब बात करते हैं अनुराग से। तो अनुराग आप बताइए कि आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं?
4: दीदी मेरी मामा की शादी पहले थी तो मैं अपने मामा के घर पहले ही घूम आया था, तो अब हम छुट्टियों में सही नहीं जा रहे हैं।
3: ओ बताओ भाई, अनुराग तो छुट्टियों में कहीं नहीं जाएंगे। तो अनुराग आपको कैसा लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, भाई पूरी छुट्टियां आप घर में रहेंगे?
4: नहीं नहीं मेरे पापा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छुट्टियों में रोज घुमाने ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे।
3: अनुराग के पापा ने प्रॉमिस कराया कि वो रोज उन्हें घुमाने भी ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे?
4: मेरे बाबा जी मुझे रोज 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो इसी वजह से मेरा सारा हॉलीडे होमवर्क भी कम्प्लीट हो जाता है।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों की, हमेशा अपना हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा अनुराग आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे?
4: हाँ दीदी मैं एक कविता स्टोरी भी सुनाऊंगा। एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह एक बाद में पहुंचा, उसने बाद में एक घड़ा दिखाई दिया, घड़े में पानी कम था, उसने संतर उठाकर उसमें गिरे तो पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। शिक्षा हमें अपनी बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए।
3: सही बात है बच्चों कि हमें चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं तो हमारी हर प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाती है। और अनुराग कह रहे थे कि वो हमें एक कविता भी सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं अनुराग से एक कविता।
4: नटसट भोलू जी ने डाला बीच नदी में अपना जाल, पकड़ेंगे हम ढेरों मछली, लेके पहुंचेंगे ससुराल, खुश होंगे श्रीमती जी साथ में साला साली सा, कुछ ही देर में शाम हो गई, मछली एक ना आई पास।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें अनुराग ने। अब चलते हैं दर्श से, पूछते हैं कि वो क्या करेंगे छुट्टियों में।
5: दीदी हम छुट्टियों में बद्रीनाथ जा रहे हैं।
3: बद्रीनाथ जा रहे हैं? तो दर्श आप इतने छोटे से हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी वहाँ पर?
5: नहीं दीदी, मम्मी हमारे सारे गर्म कपड़े लेके जा रही हैं।
3: तो आप बद्रीनाथ घूमने जा रहे हैं, तो क्या आपने अपना हॉलीडे होमवर्क कम्प्लीट कर लिया है?
5: नहीं मैं आके करूँगा।
3: अच्छा दर्श आप ये बताइए आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है?
5: मुझे मैंगो और आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है।
3: मैंगो और आइसक्रीम तो भाई सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है। तो दर्श आप भी कुछ सुनाएंगे हमारे बच्चों को?
5: मैं पोएम सुनाऊंगा। टिमटिम करते आसमान में कितने सारे तारे हैं, इनको देखो तो लगता है दिन में सबसे न्यारे हैं, नीले पीले कुछ चमकीले कितने प्यारे तारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे कितने सारे तारे हैं।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई दर्श ने।
5: दीदी मैं कौन सुनाऊंगा? I am a little teapot, short and sharp. This is my handle and this is my spout. When the little boil hear me shout, just lift up me and pour me out.
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई दर्श ने। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमें बताया कि आप अपनी छुट्टियों में कैसे एंजॉय करेंगे और साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे।
0: तो बच्चों आपने सुना कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त भाई छुट्टियों का मजा भी लेंगे और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हम आपको अपने कार्यक्रम के जरिए कोई ना कोई जानकारी देते हैं। तो आज है जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। प्यारे बच्चों हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमें बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है, साथ में समझाया जाता है कि बच्चों से काम करवाना ठीक नहीं है। बच्चों का समय पढ़ने लिखने खेलने नई बातें सीखने और खुश रहने का होता है। छोटी उम्र में किसी बच्चे से दुकान खेत या फैक्ट्री या घरों में काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और उनका बचपन भी छिन जाता है। बच्चों ये दिवस पहली बार साल 2002 में शुरू किया गया था। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को यह बताना था कि हर बच्चे को सुरक्षित और खुशहाल बचपन मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा मजबूरी में काम न करे बल्कि स्कूल जाए और अपने दोस्तों के साथ खेले और अपने सपने को पूरा करे। बच्चों, हमें भी इस दिन से सीख मिलती है कि हर बच्चा बहुत अनमोल होता है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, प्यार मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। बच्चों, बचपन सीखने और खिलने का समय है, काम करने का नहीं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे वीर बालक के बारे में बात बताएंगे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने समाज और देश के लिए बड़ा काम किया था। उनका नाम था बिरसा मुंडा। बच्चों, इन्हें आदिवासी समाज का महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलूहातू गांव में हुआ था। ये मुंडा जनजाति से थे और बचपन से ही बहुत समझदार, साहसी और दूसरों की मदद करने वाले थे। बच्चों, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज और जमींदार आदिवासी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी जमीन छीन रहे हैं और उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, यह सब देखकर बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्होंने सबको अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की हिम्मत दी। वे लोगों से कहते थे कि एकता में बहुत ताकत होती है और धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। बिरसा मुंडा ने लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने अधिकारों की रक्षा करना सिखाया। उन्होंने लोगों को मेहनत, ईमानदारी और एकता का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे उल गुलान यानी बड़ा विद्रोह कहा गया। प्यारे बच्चों, सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून को वे इस दुनिया से विदा हो गए, मगर उनके साहस और बलिदान की कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। बच्चों, हमें भी इनकी तरह हमेशा सच का साथ देना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए आज भी पूरे भारत में उन्हें प्यार और सम्मान से धरती का आबा यानी कि धरती के का पिता कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी महान विभूति क्रम में आदिवासी समाज के महान मसीहा बिरसा मुंडा जी की। तो बच्चों, अभी आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

0: एहसास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बच्चों, गर्मियों का मौसम है और कहीं घूमने ना चलें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, और वो भी छुट्टियां चल रही हों। तो चलिए, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी जगह ले चलते हैं। तो सब बच्चे तैयार हो गए ना? तो प्यारे बच्चों, आज आओ जाने क्रम में हम बात करेंगे भारत की बहुत सुंदर झील डल लेक के बारे में। बच्चों, डल लेक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में है और इसे कश्मीर की शान और धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। बच्चों, ये झील इतनी सुंदर है कि जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बीच में चमकता साफ पानी। बच्चों, ये नज़ारा किसी सुंदर चित्र जैसा लगता है। और इस लेक की सबसे खास बात है यहाँ चलने वाले रंग बिरंगे शिकारे। बच्चों, शिकारा लकड़ी की छोटी सुंदर नाव होती है, लोग इसमें बैठकर झील की सैर करते हैं और कई शिकारे तो फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ हाउस बोट भी होते हैं। हाउस बोट यानी पानी पर तैरता हुआ घर, लोग इसमें रहते हैं और घूमने आने वाले लोग इसमें ठहरते भी हैं। सोचिए बच्चों, पानी पर तैरना, घर में रहना कितना मजेदार लगता होगा। और डल लेक में कमल के फूल भी खिलते हैं, सुबह की धूप जब पानी पर पड़ती है तो झील सोने जैसी चमकने लगती है। बच्चों, ये लेक सिर्फ कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बहुत खास और खूबसूरत जगह है। तो बच्चों, अगर आपको कभी कश्मीर जाने का मौका मिले तो डल लेक की सैर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में हमें बताना भी ना भूलें कि आपको वहाँ क्या क्या मजा आया। तो बच्चों, अभी आपसे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकते हैं। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी एक आवश्यक सूचना। और बच्चों, अब देखिए ना, आपकी जानकारी भी हो गई, खास बातें भी हो गई, लेकिन आपकी कहानी रह गई जिसका हमारे बच्चों को बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी। कहानी है राजा और वफादार बंदर। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा रहते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और राजा भी बहुत न्यायप्रिय थे और सबकी मदद करते थे। राजा के महल में एक बंदर भी रहता था, वो बहुत समय से राजा के साथ था। राजा उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि बंदर हमेशा उनके आसपास रहता और उनकी सेवा करता था। धीरे धीरे बंदर को ये लगने लगा कि वो राजा का सबसे खास सेवक है, वो हर समय राजा के पास ही रहता। एक दिन की बात है कि दोपहर में राजा अपने बगीचे में आराम कर रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, और राजा को इतने सुंदर मौसम में नींद आ गई और बंदर पास ही बैठा पहरा दे रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई और आई और राजा के नाक पर बैठ गई। बंदर ने हाथ हिलाकर उसे उड़ाया। कुछ देर के बाद मक्खी फिर आ गई और इस बार तो राजा के गाल पर बैठ गई। बंदर ने फिर उसे भगाया, लेकिन मक्खी बार बार वापस आ रही थी। अब तो बंदर को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह छोटी

मक्खी महाराज को बार बार परेशान कर रही है। मुझे इसे हमेशा के लिए भगा देना चाहिए। और पास ही क्या हुआ कि राजा की तलवार रखी थी, अब बंदर ने तलवार उठा लिया और इतने में मक्खी फिर राजा की छाती पर आकर बैठ गई। अब बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, मक्खी तो उड़ गई लेकिन राजा घायल हो गए। और इतना शोर सुनकर सैनिक और मंत्री दौड़कर आए और उन्होंने राजा को संभाला। राजा समझ गए कि बंदर का मन साफ था लेकिन उसने बिना सोचे काम किया। तो राजा ने कहा, वफादारी अच्छी बात है लेकिन बुद्धि के बिना किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। बंदर को अपनी गलती समझ में आ गई, उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन के बाद वह हर काम सोच समझ कर करने लगा और राजा भी ठीक हो गए और उन्होंने बंदर को समझदारी की अहमियत भी सिखाई। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि केवल वफादारी काफी नहीं होती, बुद्धिमानी भी जरूरी होती है, क्योंकि बुद्धि से हम कितनी भी अगर बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो काम है वो हमेशा सफल रहेगा। आपने कहानी सुनी होगी ना खरगोश और उसकी शेर वाली, सुना होगा ना आप लोगों ने कि कैसे खरगोश ने अपनी बुद्धि से अपने सारे खरगोश साथियों को बचा लिया। तो इसलिए बच्चों, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी हो आए तो आप घबराएं नहीं और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, जिसमें आप सुनते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की बातें, कुछ जानकारियाँ और प्यारी सी कहानी और गीत भी। तो वैसे तो ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए है, पर हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा आपके मम्मी पापा बुआ दादा दादी नाना नानी सब सुने और अपने सुझाव हमें भेजें। और बच्चों, अगर आप लोग को कुछ कविता लिखने का शौक है या पोयम लिखने का शौक है या कुछ कहानी वगैरह लिखने का शौक है तो आप वो हमारे कार्यक्रम में भेजें, हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने कहानी भी सुना दी, जानकारियां भी दे दी और प्यारी प्यारी बातें भी सुनवा दी, लेकिन एक चीज तो रह गई और वो है प्यारा सा गीत। तो ऐसे कैसे हो सकता कि हम बच्चों को गीत ना सुनवाएं? तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, कैसा लगा आपको गीत? हमें उम्मीद है कि आपको गीत बहुत पसंद आया होगा। और आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो भी आप हमें पत्रों द्वारा ज़रूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन कोड 246763। अगर आपने सही से हमारा पता नहीं नोट करा है तो एक बार और सुन लीजिए। कार्यक्रम बाल वाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।

अभी हमारी बाल श्रोता सुन रही थी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रत्येक रविवार दोपहर 1:15 पर प्रसारित किया जाता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता सिंघल के स्वर में बुंदेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने अनीता सिंघल की आवाज में ये बुंदेलखंडी लोकगीत सुना और इसी आवाज में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने अनीता सिंघल की आवाज़ में ये बुंदेलखंडी लोकगीत सुना और इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है।

0: World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Mr. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 77th edition of Fit India Sundays and Cycle Initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister says that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion.
1: Cycling keeps you healthy and mentally fit. It also helps save fuel. It is an activity that helps keep the planet clean and sustainable. Moreover, cycling is an effective solution to one of the biggest problems today, heavy traffic.
0: Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement.
2: It's an incredible initiative, and like you said, it's become a movement almost happening for more than a year and a half now. And today, as we speak, I stand corrected, there were nearly 15,000 people today. And simultaneously, every Sunday, 200 cities across India participate in this movement.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. Northwest India and central India are likely to experience a rise in maximum temperatures by 2 to 6 degrees Celsius over the next 3 days. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with U.S. and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increased pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. We have a report from our West Asia correspondent amid fresh escalations in the region.
3: On the 100th day of the conflict, tension still prevails in the Strait of Hormuz, with kinetic activity continuing to threaten one of the world's most important maritime corridors. U.S. Central Command says American forces intercepted two Iranian one-way attack drones on Sunday after determining they posed a threat to international shipping. The incident follows Friday's downing of four Iranian drones and subsequent U.S. strikes on Iranian radar and surveillance installations at Goruk and Kesham Island. Iran responded on Saturday by launching ballistic missiles towards Bahrain and Kuwait, with U.S. officials reporting that most were intercepted before reaching their targets. The crisis has also spilled into other fronts in West Asia. In southern Lebanon, a Lebanese military vehicle near Nabatea was struck during an Israeli operation, resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
0: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister says that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi says that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently, through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Salim Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की और अब समाचार विस्तार से भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है
5: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी जिनमें राजनीतिक संबंध रक्षा और सुरक्षा समुद्री व्यापार तथा निवेश स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा पर्यटन शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे
4: एजेंडा हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी
6: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति अर्थव्यवस्था रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
4: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया
7: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक

0: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक

0: क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम एक और अनेक में। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री पर फिल्माई गीत आपको सुनवाएंगे जिसका फिल्मी करियर लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक चलता रहा। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और बाद में हिंदी फिल्मों, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो तथा फिटनेस आइकन के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। आपका फिल्मी सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा लेकिन दिलचस्प और ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में रहा। साथ ही इनका जो फिल्मी सफर था वो बहुत ही प्रेरणादायक भी रहा है। 90 के दशक में एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में शुरुआत करने से लेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाने तक उन्होंने इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। शिल्पा शेट्टी की फिल्मी करियर की धमाकेदार शुरुआत है 1993 में रिलीज हिंदी फिल्म बाजीगर से। इस फिल्म से शिल्पा शेट्टी ने मात्र 18 साल की उम्र में शाहरुख खान और काजोल के साथ दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बना ली। श्रोताओं, जिक्र हुआ है फिल्म बाजीगर का, तो आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म का ये गीत सुनते हैं जिसको आवाज दी है आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना बाजीगर फिल्म से। बाजीगर फिल्म का ये गीत जो शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया था, ये दर्शकों को बहुत पसंद आया था और शिल्पा शेट्टी को अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। साथियों, 1990 का दशक शिल्पा शेट्टी के लिए सफलता और संघर्ष का दशक रहा। बाजीगर के बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे आग, औजार, जानवर और परदेसी बाबू। और फिर उसके बाद आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये फिल्म आई थी 1994 में और इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी के किरदार ने उन्हें रातों रात बड़ी स्टार बना दिया। इस फिल्म का एक गीत था चुरा के दिल मेरा, जिसमें अक्षय कुमार के साथ उन्होंने भूमिका निभाई है और इस गीत को दर्शकों ने बहुत अधिक पसंद किया था। और ये गीत आज तक, अगर हम कहें कि शिल्पा शेट्टी का के कैरियर का सबसे आइकॉनिक गीत बना हुआ है, तो शायद गलत नहीं होगा। आइए सुनते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: श्रोताओं, एक और अनेक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुपरहिट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर फिल्म आई गीत मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म के बाद आता है शिल्पा शेट्टी की करियर का टर्निंग पॉइंट 2000 का दशक। साल 2000 के बाद आपकी इमेज सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस से बदलकर एक संजीदा अभिनेत्री के रूप में उभरी और साल 2000 में आई एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म धड़कन। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ आई इस फिल्म ने शिल्पा के करियर को एक नई ऊंचाई दी।

इस फिल्म के गाने आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी याद बनाए हुए हैं। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये एक गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़कन से, जो रिलीज हुई थी साल 2000 में, और ये शिल्पा शेट्टी के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे इंडियन, रिश्ते, फिर मिलेंगे, गर्व, अपने साथियों। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने जैसे फिल्म जगत से अपने आप को बहुत दूर कर लिया, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद 2021 में फिर वापसी की शिल्पा शेट्टी ने फिल्म हंगामा 2, निकम्मा और सुखी से। खास बात यह है कि शिल्पा शेट्टी ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जैसी फिल्मों में भी काम किया। तो इस तरह से श्रोताओं, शिल्पा शेट्टी का जो फिल्मी करियर है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है, और लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिलों में जो अपनी एक छाप बनाई है वो हमेशा दर्शकों को इसी तरह याद रहेगी। और पृथ्वी फिल्म का ये गीत हम सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

अनेक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं, प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं विजय वर्मा जी, जो कि हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। विजय वर्मा जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में रिश्ता ये खास है।
1: नमस्कार रेणु जी, वास्तव में आकाशवाणी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। नजीबाबाद से पहले रेडियो दिल्ली सुना करते थे, यहाँ चूंकि रेडियो दिल्ली का जो प्रसारण आता था और कोई रेडियो नहीं आता था, तो मैं बचपन से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद जब यहाँ नजीबाबाद रेडियो स्टेशन शुरू हुआ, उससे पहले प्रायोगिक प्रसारण शुरू होते थे
0: जी।
1: तो प्रायोगिक प्रसारण हम बड़े चाव से सुनते थे। ये लगभग मैं समझता हूँ 1973 के आसपास की बात है, तब से ये रेडियो नजीबाबाद से जुड़ा हुआ हूँ।
0: मैं आपसे सबसे शुरू में ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास सबसे शुरू में जो रेडियो था वो किस प्रकार का था?
1: हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मुझे हंसी भी आ रही है इस बात को कहते सुनते। वास्तव में हमारे यहाँ एक रेडियो हुआ करता था बिजली से चलने वाला
0: जी।
1: तो वो रेडियो इस तरह का था, हमारे बड़े भाई साहब जो थे उनकी शादी में मिला हुआ था वो रेडियो, उसी से दिल्ली रेडियो सुनते थे। तो वो रेडियो काफी पुराना हो गया था
0: जी।
1: अब जिस समय प्रायोगिक प्रसारण के लिए धुन बजती थी रेडियो की, शुरू वाली जो मंगल ध्वनि आती है, तो जैसे ही वो बजती थी हम तुरंत रेडियो की तरफ दौड़ते थे। अब एक दिन क्या हुआ, रेडियो की ट्यूनिंग थोड़ा सा गड़बड़ थी, तो मैंने उस ट्यूनिंग को सही करना चाहा, क्योंकि 00 पर सुनने की आदत पहले से रही है, रेडियो का चाव बड़ा अच्छा रहा। तो उसको ट्यूनिंग को जैसे ही मैंने सही करने की कोशिश की तो मुझे करंट लगा बहुत अच्छा वाला।
0: अच्छा, मतलब वो लाइट से चलती थी रेडियो?
1: हाँ, बिजली से चलने वाला रेडियो, वाल्व वाले रेडियो आते थे पहले, वो वाला रेडियो था। तो बड़ी पुरानी बात है, मैं उस समय 13 साल का रहा होऊंगा, तब की बात ये, मैं मुझे याद आपने दिला अच्छा। दी उस रेडियो की। और एक बात और याद है मुझे रेडियो की
0: जी।
1: रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था।
0: अच्छा।
1: यदि आपके यहाँ रेडियो है तो उसकी बाकायदा आकाशवाणी की फीस जमा होती थी, शायद 5 रुपए या 10 रुपए इस तरह की फीस थी सालाना।
0: मतलब रेडियो रखने के लिए
1: लाइसेंस लेना पड़ता था।
0: अच्छा।
1: और उसकी पोस्ट ऑफिस में फीस जमा हुआ करती थी,
0: मतलब वैसे कहीं जमा नहीं होती थी, वो पोस्ट ऑफिस में ही जमा,
1: पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होती थी, उसकी रसीद लेनी होती थी। और रेडियो के इंस्पेक्टर हुआ करते थे।
0: अच्छा।
1: वो घूमते थे, किसी के यहाँ अवैध अगर बिना लाइसेंस का रेडियो है या उसने एक रेडियो के साथ दूसरा स्पीकर जोड़ रखा है तो उसपे भी अलग शुल्क था।
0: अच्छा,
1: मैं इतना पुराना श्रोता हूँ।
0: और अब मैं वर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो उस समय के जो कार्यक्रम है और धीरे धीरे जो हमारे कार्यक्रमों में बदलाव आया वो आपको कैसा लगा?
1: देखिए, एक घटना बड़ी मेरे कॉलेज टाइम में बड़ी विचित्र मेरे साथ हुई
0: जी।
1: मैं अपने कॉलेज की तरफ से बिजनौर एक कार्यक्रम में स्पीच देने के लिए गया हुआ था
0: जी।
1: तो वहां पर एक कार्यक्रम अधिकारी थे तत्कालीन श्री डीएस विमल जी, सरदार जी थे वो, तो उन्होंने मेरी स्पीच जब सुनी वहां पर तो उनको पता नहीं मुझसे क्यों प्रभावित हुए, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया
0: जी।
1: वहां पर और पता किया कि कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, तब मैं इंटरमीडिएट में था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको आकाशवाणी में बुलाएंगे। तो तब से मुझे इसको कहते ना चस्का
0: लगना,
1: चाव पैदा हुआ। तो उसमें कई कार्यक्रमों में आकाशवाणी में गया, डीएस विमल जी के टाइम में गया और उसमें सत्यप्रकाश हिंदवान जी थे, सत्यप्रकाश हिंदवान जी बहुत बढ़िया वाले नाटककार थे।
0: अच्छा।
1: उनके मैंने आकाशवाणी नजीबाबाद से अनेकों नाटक सुने, इतने अच्छे नाटक बनाते
0: मतलब शिक्षा प्रद
1: नाटक रात को आया करते थे नाटक उनके। और गिरीश चंद भटनागर जी थे, एसपी श्रीवास्तव जी थे, तो मैं आकाशवाणी से वैसे कार्यक्रमों से भी जुड़ा रहा,
0: जी
1: तो तब के कार्यक्रम मुझे बड़े याद आते हैं। उस समय एक कार्यक्रम हुआ हुआ करता था युवाओं का, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट में और उसके बाद ग्रेजुएशन की क्लासेज में गया,
0: तो उस
1: तो
0: समय जो हमारे युवाणी कार्यक्रम का मतलब क्या नाम हुआ करता था?
1: आजकल का जो युवाणी कार्यक्रम है ना, मैं
0: जी
1: यही बताना चाह रहा था,
0: जी
1: उस समय कार्यक्रम होता था तरुण संगम के नाम से।
0: अच्छा
1: तरुण संगम कार्यक्रम और युवाणी कार्यक्रम में बेसिक फर्क महसूस दिया मुझे।
0: क्या कौन सा फर्क?
1: उस समय युवाओं की भावनाएं पूछी जाती थी कि आप क्या चाहते हैं,
0: जी
1: और अब तो यह है कि आकाशवाणी में जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपने तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं।
0: जी
1: क्षेत्रीय युवाओं को बुलाया जाता था, बहुत काफी युवा तरुण संगम से जुड़े हुए थे,
0: जी
1: और एक बहुत अच्छी बात ये थी
0: जी
1: युवाओं में प्रतिभा का विकास करने के हिसाब से तरुण संगम इतना बढ़िया कार्यक्रम था। तो मेरी उस समय की अच्छी याद है, बहुत लड़के बहुत जो अब तो वृद्ध हो गए हो,
0: जी
1: अभी एक मैं नाम बता दूं, प्रदीप डे जी
0: अच्छा प्रदीप डे जी, तो वो तो अभी भी आते हैं
1: आते हैं ना
0: आकाशवाणी? जी जी
1: आकाशवाणी
0: जी
1: में अभी
0: जी
1: भी, तो वो प्रदीप डे जी आकाशवाणी नजीबाबाद के देन हैं।
0: अच्छा
1: उनको इतना निखारा, आज प्रदीप डे जी का नाम जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है।
0: जी
1: तो ऐसे बहुत सारे बहुत युवा आकाशवाणी ने निखारे हैं।
0: जी
1: 1981 से तो मैं लगातार जुड़ा रहा, बहुत कार्यक्रम सुने।
0: जी
1: तो अब आज के जो कार्यक्रम हैं उसमें कुछ थोड़ी सी विविधता आई है।
0: जी
1: पहले चूंकि जानकारियां जितनी थी उस तरह से चलता था, अब आज की जानकारियों में वैज्ञानिक जानकारियां बहुत बढ़ गई हैं
0: जी
1: और काफी इस तरह के विकास हुए हैं, उनकी जानकारियां बढ़ गई हैं,
0: जी
1: समाचार भी थोड़ा सा विस्तृत हो गए हैं,
0: जी
1: तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज बड़ी अच्छी मेरे यहाँ आपको मैं बताऊं,
0: जी
1: बीच में जब मैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों में गया
0: जी
1: तो वहां रेडियो स्टेशन पर एक व्यवस्था देखी मैंने,
0: जी
1: तो वहां एक जो अपना रिसेप्शन रूम है
0: जी
1: आकाशवाणी का, वहां एक रेडियो का स्पीकर लगा हुआ है,
0: एंट्री पे ही लगा हुआ
1: एंट्री
0: है
1: पर लगा
0: जी
1: हुआ है ना, तो वहां मुझे वो व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। जब हम वहां बैठे थोड़ा
0: जी
1: सा वेट किया तो
0: जी
1: रेडियो सुनते रहे बैठे हुए,
0: हाँ
1: और आगे चले तो वहां भी स्पीकर लगा हुआ है।
0: जी
1: मतलब ये कि आप पूरे आकाशवाणी परिसर में घूम जाइए,
0: आकाशवाणी
1: वहां
0: सब
1: विभिन्न जगहों पर स्पीकर लगे हुए
0: जी
1: हैं, आप आपकी कोई एक शब्द भी मिस नहीं होगा,
0: हाँ, ये
1: आप
0: बहुत
1: घूमते
0: अच्छी
1: रहे।
0: बात है
1: तो
0: आकाशवाणी
1: वो
0: की
1: वाली व्यवस्था फिर मैंने घर में की,
0: जी
1: तो मेरे पास दो स्पीकर लगे हुए हैं, और जो रेडियो का जब से शुरुआत होती है ना सुबह मंगल ध्वनि से,
0: जी
1: मंगल
0: मतलब
1: ध्वनि
0: 5:53 से
1: जी,
0: आपका रेडियो ऑन हो जाता
1: हाँ,
0: है
1: श्रीमती जी का सबसे पहला काम है रेडियो को ऑन करना।
0: जी, मतलब भाभी जी और आप दोनों एक साथ
1: हाँ
0: सुनते
1: दोनों
0: हैं?
1: सुनते हैं और वो मेरे से ज्यादा अच्छी श्रोता हैं। तो अब सुबह को मंगल ध्वनि से कार्यक्रम जब शुरू और रेडियो का होता है,
0: जी
1: उसके बाद फिर वंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आ जाता है 6:05 पर,
0: जी
1: वो हम बड़े तन्मयता के साथ सुनते हैं। सुबह का पूरा मूड फ्रेश हो जाता है एकदम।
0: चलते चलते वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जो हमारा आकाशवाणी में चल रहे कार्यक्रम है वो कैसे लगते हैं, और क्या हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए कार्यक्रम तो अविश्वसनीय रूप से बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, विश्व स्तरीय कार्यक्रम आकाशवाणी प्रस्तुत कर रहा है आजकल।
0: जी
1: युवाओं को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आकाशवाणी से जुड़ेंगे तो आपकी प्रतिभा में निखार उत्पन्न होगा।
0: जी
1: आपको किसी एक विषय पर लिखना आएगा, आपको किसी एक विषय पर बोलना आएगा, उसको सिखाने वाला आकाशवाणी है। आकाशवाणी एक ऐसा मंच है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है।
0: विजय वर्मा जी, आज आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम इस कार्यक्रम में लेते हैं विदा और करते हैं सभी श्रोताओं को नमस्कार, और वर्मा जी आपको स्पेशल नमस्कार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:05 पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय होगा लू में पशुओं की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रजनीश से जितेंद्र कुमार की बातचीत। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे कहानी हौसलों की उड़ान। कहानीकार होंगे विभा पांडे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे अजय जोशी की गायी गजलों का। कार्यक्रम अदबी दुनिया के अंतर्गत 7:50 पर आज के कलामे शायर होंगे दीपक अरोड़ा। नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कॉपी आज रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में, और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे डॉक्टर अनिल चौधरी का काव्य पाठ सुबह 6:45 पर। कल सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा संगीत सुनिए और स्वस्थ रहिए। कल सुबह 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा सघन कृषि आज की आवश्यकता। मनोरंजन और जानकारी से ओतप्रोत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे गीता पंत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत बात आसपास की। आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर। पाचन स्वर एवं संकलन होगा दिव्यम कर्णवाल और इशिका कौशिक का।

आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा मॉडर्न करियर में टेक्नोलॉजी की भूमिका। इस विषय पर डॉक्टर रेशु शर्मा से ज्योतिपाल की बातचीत। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल दिन में 1:45 पर कुमारी मीना के गाए जौनसारी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। कल शाम 5 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है प्रसारित किया जाएगा। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना विषय पर कुलदीप सिंह से प्रमोद सिंह की बातचीत।

कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे वार्ता प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। वार्ताकार होंगे सुभाष चंद्र वर्मा। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे वंशिका सोती के गाए भजनों का।

पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ ख्वाहिशें हवा में घुल जाती हैं, कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो सिर्फ आवाज से पहचाने जाते हैं।
1: और दोस्तों, रेडियो का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें हम आपको देख नहीं पाते हैं, फिर भी हर रोज एक अपनापन जुड़ जाता है, और यही तो होता है दिल से दिल का रिश्ता।
0: जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, और आज आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: हेलो फ्रेंड्स, शिवानी और आप सभी के साथ प्रोग्राम से जुड़ गई हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी। वैसे दोस्तों, ये जो संडे का दिन होता है ना, वो थोड़ा थम जाने का दिन होता है, खुद से मिलने का, उन एहसासों को महसूस करने का दिन होता है जो हर रोज कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाता है।
0: बिल्कुल सलोनी, वक्त का क्या है, गुजर ही जाता है, पर ये संडे वाकई कुछ पल चुरा लेता है जिंदगी से, और लगता है जैसे थके हुए दिल को राहत मिल गई हो।
1: वैसे शिवानी, कभी सोचा है संडे इतना स्पेशल और प्यारा क्यों लगता है?
0: शायद सलोनी इसलिए कि इसमें कोई जल्दी नहीं होती, कोई घड़ी की सुई पीछा नहीं करती।
1: लेकिन शिवानी, प्रोग्राम की घड़ी तो हमारा पीछा जरूर कर रही है, तो अपने दोस्तों को देते हैं तोहफे, और शुरुआत करते हैं तोहफे की इस प्यारे से सॉन्ग के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
6: सुपर फास्ट
5: एक्सप्रेस के यात्री
6: इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना।
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
11: हो जाओगे एहसास कर लोट को,
10: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
12: और डोज में क्या है?
11: डोज में है मजा।
10: जी हाँ, मजा आ गया।
12: बाबा जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? मैं तो बहुत परेशान हो गया।
13: बेटा तुम्हारी कुंडली में तो 2-2 शादी के योग हैं।
12: अरे जाओ बाबा जी, आप ऐसे बोल रहे हो, मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई अभी, देखो ना क्या अड़चन आ रही है।
13: नहीं नहीं बेटा, 2-2 शादियां का योग है तुम्हारी कुंडली में।
12: अच्छा तो बताओ बाबा जी, मेरी शादी कब होगी फिर?
13: बेटा अफसोस की बात है कि वो दोनों शादी तुमने बचपन में ही कर ली।
12: कब?
13: अरे तुम जब बचपन में घर घर खेलते थे उसमें ही तुमने अपनी दोनों शादियां कर डाली।
12: क्या
10: क्या मजा आ गया।
13: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। वैसे दोस्तों हम अक्सर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आज के दौर में एक और बात जोड़ना जरूरी है, जैसा सुरक्षित भोजन वैसी बेहतर सेहत।
12: जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियाद है।
13: जी हाँ दोस्तों, हम सबको अच्छा खाना पसंद होता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक फूड हमारे दिन का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो खाना हमारी थाली में आता है वो कितना सेफ है?
12: दोस्तों कई बार खाने का टेस्ट, उसकी कीमत या उसकी दिखावट तो देखकर ले लेते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं देते। जबकि अनसेफ फूड यानी जो असुरक्षित भोजन होता है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
13: इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि हम सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखें। जैसे घर में खाना बनाते समय हाथों की सफाई, साफ पानी का इस्तेमाल, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और सही तरीके से फूड को स्टोर करना, जैसी छोटी छोटी बातें हमें और हमारी फैमिली को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।
12: जी हाँ दोस्तों, आप बाहर का खाना खाते हैं तो एक बार जरूर ध्यान दीजिए कि जगह साफ हो और खाना ताजा हो, और पैकेट फूड खरीद रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी पैकेजिंग स्थिति को भी जरूर देख लें, चेक कर लें, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता बल्कि हमारी सेहत और हमारी जीवन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ होता है।
13: बिल्कुल, इसलिए सेफ फूड चुनना एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।
12: बिल्कुल दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है आपको ये प्यारा सा सॉन्ग सुनवाने की।

0: दोस्तों, कभी-कभी कुछ शायर सिर्फ शायरी नहीं करते, बल्कि दिल में छिपे गमों को शायरी के जरिए बयां करते हैं। और आज शब्दों के शिल्पकार में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शायर की, जिनकी शायरी में वो एहसास था जो लोगों के दिलों तक पहुंचा। तो चलिए, बिना देर किए संडे स्पेशल प्रोग्राम में मिलवाते हैं आज के हमारे शब्दों के शिल्पकार से।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, कुछ शायर सिर्फ शायरी नहीं लिखते, वो हमारी जिंदगी के एहसासों को अल्फाज दे देते हैं। जब भी उर्दू अदब और गज़ल की बात होती है तो एक नाम बड़ी मोहब्बत के साथ लिया जाता है, बशीर बद्र साहब का। जी हाँ, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उनके अल्फाज सीधे दिल तक पहुंचते थे। उन्होंने मोहब्बत, रिश्तों, तन्हाई और ज़िंदगी के छोटे छोटे जज्बात को इतनी सादगी से बयां किया कि हर इंसान को उनकी गज़लों में अपनी कहानी नज़र आती थी। आज हम याद कर रहे हैं उर्दू अदब के उस चमकते सितारे को, जिसने मोहब्बत, दर्द, रिश्तों और इंसानियत को ऐसे अल्फाज दिए जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो नाम है बशीर बद्र साहब का। जी हाँ, 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश में जन्मे बशीर बद्र साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में उर्दू साहित्य के प्रतिष्ठित अध्यापक और शायर बने। उनकी गज़लों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। वो मुश्किल एहसासों को भी बेहद आसान शब्दों में कह देते थे। जी हाँ, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वो शेर जो इंसानियत की सबसे बड़ी आवाज़ बन गया, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। साल 1987 यानी 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर जल गया और उनकी हजारों अप्रकाशित रचनाएं नष्ट हो गईं। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतने बड़े दर्द के बाद भी उनकी शायरियों में नफरत नहीं आई। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। उनकी गज़लें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की गईं। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। उनकी गज़लें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की गईं। दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी सोच और उनकी रचनाएं हमेशा हमारे बीच रहती हैं। उर्दू अदब के ऐसे ही महान शायर बशीर बद्र साहब, आज भले ही वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शायरी आने वाली कई पीढ़ियों तक दिलों को छूती रहेगी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे
2: और जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: डॉक्टर साहब नमस्ते।
6: नमस्कार जी, बताइए।
5: डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज कर दो, मुझे रात में बहुत ज्यादा सपने दिखाई देते हैं।
6: अच्छा, वैसे क्या दिखता है सपने में?
5: डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं।
6: अच्छा, तो मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई खाना, अब सपने नहीं आएंगे तुम्हें।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना ये दवाई कल से खाऊंगा।
6: क्यों?
5: आज तो फुटबॉल का फाइनल है, वो तो देखूंगा ही।
4: हाँ, मजा आ गया।
6: जी हाँ दोस्तों, मजा तो आ रहा होगा, और अब इस मजे को और दुगना करते हैं ना, क्या सलोनी?
5: बिल्कुल शिवानी, आखिर हमारा फर्ज भी यही है, हम अपने दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लाते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लाते हैं, तो क्यों ना ले लिया जाए ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: शिवानी, कभी तुमने सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है?
1: अगर मुझसे पूछा जाए तो सलोनी, मैं कहूंगी कि वो चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, वो है एहसास।
0: बिल्कुल शिवानी, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अक्सर आंखों तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जो महसूस होता है वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: और शायद इसलिए एहसास की कोई शक्ल नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, फिर भी इसकी मौजूदगी हर जगह होती है।
0: बिल्कुल, एक छोटे से बच्चे को ही देख लो शिवानी, उसे दुनिया की कोई भाषा नहीं आती, लेकिन वो अपनी माँ के स्पर्श को, उसके एहसास को पहचान लेता है। वो जान जाता है कि यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है, माँ की गोद।
1: और यही एहसास आगे चलकर सलोनी रिश्तों की नींव भी बनाता है। माँ की ममता, पिता की फिक्र, भाई बहन का साथ, दोस्तों की दोस्ती, सबकी जड़ में कहीं ना कहीं एहसास ही तो है। आज लोगों के पास बात करने का समय है लेकिन सुनने का नहीं, साथ रहने का समय है लेकिन समझने का नहीं।
0: और जब समझने की कोशिश खत्म हो जाती है तब रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं शिवानी।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई इंसान हजारों शब्द बोल देता है फिर भी दिल तक नहीं पहुंच पाता, और कभी किसी की एक खामोश नजर बहुत कुछ कह जाती है।
0: क्योंकि दिल की भाषा शब्दों की नहीं एहसासों की भाषा होती है।
1: सलोनी, मुझे लगता है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत, उसकी सफलता या उसके पद से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके अंदर दूसरों के लिए कितने एहसास हैं।
0: बिल्कुल, जब किसी को दर्द में देखकर आपका दिल बेचैन हो जाए, जब किसी की खुशी देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है।
1: और यही इंसानियत, यही संवेदनशीलता, यही एहसास इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है।
0: कई बार जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, और यकीन मानिए वही एहसास हमें बेहतर इंसान बनाता है।
1: क्योंकि जब तक अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा, तब तक सुधार की शुरुआत भी नहीं हो सकती।
0: और जब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होगा, तब तक मदद का हाथ भी आगे नहीं बढ़ेगा।
1: यही वजह है कि एहसास सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है।
0: दोस्तों, कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठकर उनकी बातें सुनिए, कभी अपने मम्मी पापा के चेहरे को गौर से देखिए, कभी अपने दोस्त की खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए।
1: हो सकता है दोस्तों वो आपसे कुछ कह ना पाए, लेकिन उनके एहसास बहुत कुछ कह रहे होते हैं।
0: क्योंकि हर

0: दोस्तों, आवाज में बस जाए अगर दिल की कहानी, तो हर गीत लगे अपनी ही जुबानी, है ना सलोनी?
1: जी हाँ दोस्तों, और गीतों के साथ साथ हमने आपको इतने प्यारे प्यारे सेगमेंट सुनवाए, जैसे शब्दों के शिल्पकार में आज आपने सुना बशीर साहब जी को, जिनका शेर बहुत ही प्यारा लगा शिवानी, क्यों याद है ना तुम्हें,
0: बिल्कुल
1: कि बड़े लोगों से जरा सोच समझ कर मिलो, बड़े लोगों से जरा सोच समझ कर मिलो, दरिया जब समुद्र में मिल जाता है तो दरिया नहीं रहता। तो शिवानी, क्या ख्याल है अपने दोस्तों के लिए अब आपका?
0: तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि बहुत सारे जो उनके शायरी हैं बहुत अच्छी शायरी हैं, तो उसमें से मुझे भी कुछ याद आ रही है। देखो, जैसे उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
1: वैसे शाम तो हो चली है, रात भी होने वाली है, तो क्यों ना अपने दोस्तों को आज के प्रोग्राम का ये अंतिम गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए, और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: दोस्तों इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी सलोनी और
0: शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का

0: मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो हमारे भाइयों की खेती किसानी से एक बात है कि भाई हमारे किसान भाई रात दिन अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। भाई इस समय देखो गन्ने की फसल खड़ी है, तो भाई गन्ने में हमारे किसान भाई सिंचाई में लगे हुए हैं और भैया उसके खरपतवार नियंत्रण के लिए भैया निकाई गुड़ाई में लगे हुए हैं। खैर भाई देखो हमारे किसान भाई मेहनत खूब कर रहे हैं, खेती किसानी की बात भी करेंगे साथ ही साथ पशुपालन की बात भी करेंगे। लेकिन भाई आज देखो 7 जून है और 7 जून को एक विशेष दिन होता है। भाई वैसे तो देखो हर दिन एक विशेष ही होता है, लेकिन भाई कुछ दिन ऐसे होते हैं जो भैया कुछ विशेष

0: होते हैं। तो भाई आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और भाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। भाई इस दिन का कारण मनाने का ये होता है कि भैया हम जो है सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के महत्व के प्रति हम किसान भाइयों को, अपने नौजवान साथियों को, जो हमारे बच्चे हैं उन सभी को जागरूक करें, ताकि भाई हमारे जो भोजन है भैया उसमें भैया कोई विषाक्तता ना आवे, क्योंकि भाई भोजन जो हमारा वो जीवन का आधार है। लेकिन यदि हम भोजन ही दूषित या असुरक्षित करेंगे तो भाई हम अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे भाई, अनेक बीमारी हमारे शरीर में हो जाएंगी। तो इसलिए भाई खाद्य सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। और भाई यदि हम बात करें कि भाई इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि भैया सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। दूषित भोजन से खाद्य पदार्थ हो भैया, हमारा भोजन हो, हमारा जो सामग्री है खाना बनाने वाली, वो भैया यदि विषाक्त है तो भैया उससे हमारे शरीर में काफी रोग हो जाए। देखा होगा कि भैया दस्त हो जा, हैजा हो जा, अन्य गंभीर रोग हो सकते हैं, कि भाई फूड पॉइजनिंग हो गई काफी जगह। आप भी सुनते भी होंगे कि भाई वहां अस्पताल में लोग तमाम भर्ती हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। तो भाई हम जो है अपने खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना है, हम जो है साफ सुथरा भोजन खाना है, इस इन चीजों का, छोटी छोटी बातें हैं ये भैया, इनका हम बहुत विशेष ख्याल रखना है। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए भाई भोजन को स्वच्छ वातावरण में तैयार करना चाहिए। खाने से पहले और भोजन बनाने से पहले हाथों को भैया अच्छी तरह से धोना चाहिए। फल सब्जियों को साफ पानी से धोकर उपयोग करना चाहिए। भोजन को उचित तापमान पर पकाना चाहिए, ताकि भाई सुरक्षित ढंग से वो संग्रहित हो सके और भाई हम समय से उसको भैया खा सकें। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे भाई हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें रसोई में अपना कर और भाई अपने खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकती हैं। और भाई इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे जो आजकल बाहर पढ़ते हैं, तो भैया वो कभी कभी कमरा लेकर हाथ से भी खाना बनाते हैं अपने हाथों से। तो भाई वो जो है इस खाद्य सुरक्षा को समझें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो भाई ये तो थी कुछ जानकारी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में। अब भाई कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भाई संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई हम देखो खेती किसानी की बात कर रहे थे, और भाई इस समय भैया हमारे खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है, हरे चारे में भैया देखो हमारी चरी बाजरा खड़े हैं। दूसरे भाई अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे किसान भाई बागवानी करते हैं, तो बागों में इस समय देखो आम का फल हमारे किसान भाइयों के लिए जो फलों का राजा होता है वो पकने के लिए तैयार है बिल्कुल पेड़ों पर। और साथ ही साथ बागवानी के साथ साथ भैया हमारे कुछ किसान भाई सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। तो भाई गर्मी का मौसम है और गर्मियों में सब्जियों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई सब्जी जो होती है वो बहुत ही कोमल मुलायम होती है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी जो मौसमी सब्जी है भाई वो इस समय कौन कौन सी है। तो भाई देखो लौकी है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, और भाई अन्य टमाटर हैं, और काफी तरह की सब्जियां हैं, भिंडी है भाई, बैंगन है। देखो ये सब्जियां जो हैं ये भाई कोमल होती हैं, यदि हम इनकी समय से तुड़ाई करें भैया पौधों से, तो भाई ये जो है ताजी और भैया एक तरह का चमक बनी रहती है इन पर। और यदि हम दोपहरी में इस समय तुड़ाई करेंगे तो भैया उनकी जो चमक है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जिन हमारे भाइयों ने सब्जियों की फसलें लगा रखी हैं, तो वो सब्जियों की तुड़ाई भाई सुबह शाम भैया करें, भाई दोपहर में बिल्कुल भी ना करें। दूसरे भाई हम जो है एक चीज का और ध्यान रखना है कि भाई हम अपने खेतों की समय समय पर निगरानी करते रहना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि सब्जियों की फसल हमने बो दी और भैया हम पानी देना चले गए उस फसल को, या हम भैया उर्वरक या खाद देना चले गए, तो भाई हमें इतना ही ध्यान नहीं रखना। हमें ध्यान यो भी रखना है कि

भाई हमें सुबह शाम अपने खेत की निगरानी करनी है, क्योंकि भाई जब फल हमारा कोई सा भी हो, चाहे सब्जियों का हो या भैया अन्य कोई फल हो, तो जब हमारे फसल पर फल आता है तो भाई उसमें काफी तरह के कीट बीमारियां आ जाती हैं। तो हम यदि अपनी फसल के प्रति, अपनी खेती किसानी के प्रति जागरूक रहेंगे तो भाई हमारी जो फसल है उसमें कीट आने से पहले हम अपनी फसल को बचा लेंगे, और जब फसल बचा लेंगे तो भाई जो हमें फलत मिलेगी उसकी, उससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ होगा। तो भाई इस समय आप सुबह शाम अपने खेतों की निगरानी करते रहें, क्योंकि भाई ऐसी काफी तरह की सुंडी होती हैं जो भैया फलों में छेद कर देती हैं और फल भैया खराब कर देती हैं। साथ ही साथ फलों के साथ साथ भैया जो हमारे फसल है उसका पत्ता है भैया, उसका जो है हरित जो लवक होता है उसको भैया खाकर नष्ट कर देती हैं, और पौधे हमारे खड़े रह जाते हैं सिंगल, उसकी यानी कि सारी पत्ती खा लेती हैं। तो हम जो है समय से भैया उसका नियंत्रण करना है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई हम जो है रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग सब्जियों की फसलों में ज्यादा ना करें, क्योंकि भाई ये हमारे मानव स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं भैया प्रभाव डालती हैं, कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य को भैया बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। क्योंकि जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो भाई वो जो है हमारे फल जो है सब्जियों के, भाई उनमें भी उसकी कुछ मात्रा जाएगी, और जब हम उसको भैया घर ले जाएंगे खाना बनाएंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं उस हमारे शरीर को प्रभाव होगा। साथ ही जैविक कीटनाशी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, चाहे नीम नीम जैविक आधारित ले लो या अन्य जैविक कोई कीटनाशी ले लो, तो भाई उससे आप जो है कीटनाशी का प्रयोग करें जैविक। साथ ही साथ अपने खेतों में भैया देखो गर्मी का मौसम है, सिंचाई करते रहें, क्योंकि भाई जो फसल होती है हमारी सब्जियों की वो भैया जल्दी जल्दी पानी मांगती है। एक चीज का हमें इसमें थोड़ा सा ख्याल यो रखना है या ये व्यवस्था करनी है सिंचाई की, कि भाई हमारे खेत में कहीं भी छोटा मोटा जल भराव ना हो, क्योंकि भाई सब्जियों की फसल को बहुत ही हल्का पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन भैया बार बार सिंचाई यानी कि सिंचाई अंतराल हमारा कम होना चाहिए और जल भराव बिल्कुल भी ना हो। भाई हल्का सी पानी निकाल दें, फिर अगली सिंचाई 5 से 7 दिन के अंतराल पर अपने खेतों में करते रहें, और भाई समय से अपनी जो फसल है भैया जो सब्जियां हैं उसकी तुड़ाई करें। और भाई इस तरह से यदि आप देखभाल करेंगे अपनी सब्जियों की फसल की और भैया समय से तुड़ाई करेंगे तो भाई आपको सब्जी उत्पादन में अच्छा लाभ होगा, अच्छी फसल की कीमत मिलेगी, और जब कीमत अच्छी मिलेगी तो भाई हमारे किसान भाइयों के जो भैया नियमित खर्च हैं वो भैया समय से चलते रहेंगे। तो भाई देखो ये तो कुछ बातचीत हो गई सब्जियों की देखभाल की, भाई अब कार्यक्रम में एक और छोटा सा विराम लेते हैं और सुनते हैं ये कुछ प्रोमो।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: भैया प्रोमो के बाद एक बार फिर स्वागत है। और भाई अब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, हम सब्जियों की बात कर रहे थे। देखो सब्जियों क्या बात कर रहे थे, कुल मिलाकर गर्मी की बात कर रहे थे। तो भाई

0: गर्मी जो है भाई हमारी फसलों के साथ साथ भैया मानव स्वास्थ्य पर, हमारे भैया पशुओं पर भैया काफी प्रभाव डालती हैं। क्योंकि भाई देखो गर्मी जो होती है उसमें भैया लू चले कर, और लू से भैया हम अपना बचाव करना है भाई, हमारे किसान भाई तो देखो अपनी सुरक्षा के लिए जब जंगल को जाओ है तो भैया एक कपड़ा अपने सिर पर रखने के लिए अवश्य ले जाएं। क्योंकि भाई जो हमारा सूर्य है उसकी जो किरणें आती हैं जमीन पर भैया, वो सीधे हम मानव स्वास्थ्य पर या हमारे शरीर पर भैया ना पड़े। पूरे बांव के आप पूरे हाथों के भैया कपड़े पहनना, और भाई साथ ही साथ एक कपड़ा रखें, और साथ ही एक चीज का और विशेष ध्यान रखें कि भैया अपने पास पानी की व्यवस्था रखें। और भाई हर घंटे, हर 20 मिनट में, आधे घंटे में, जब भी आपको हल्की सी प्यास लगे आप पानी पीते रहें। और भाई दूसरी बात, एक चीज और है कि भाई हम खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, तो भाई पशुओं से देखो अगर हमें गर्मी लगेगी तो हम तो कह देंगे कि भाई या तो पंखा चला लेंगे, या भैया हाथ वाला पंखा चला लेंगे, या किसी अन्य छाँव में बैठ जाएंगे भैया पेड़ की, तो भाई अपनी गर्मी को हम शांत कर लेंगे कुछ देर आराम करके। लेकिन भाई जो हमारे पशु हैं भाई, उन्हें लू लग रही, उन्हें गर्मी लग रही, उन्हें प्यास लग रही, भाई वो तो किसी से बता नहीं सकते। तो उनका ध्यान तो हमें ही रखना भाई, उनका ध्यान हमें इस तरह से रखना है कि भाई हम जब पशुओं को अपने सुबह शाम भैया बाहर को बांधें पशुशाला से, तो भाई ऐसे स्थान की व्यवस्था करें जहाँ भैया छायादार हो, यानी कि या तो किसी पेड़ की छाया हो, जिससे भैया सीधे हमारे पशु को जो है लू प्रभावित ना करे, या भैया सीधे हमारे पशु को सूर्य की रोशनी ना लगे। और भाई साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है कि भैया हम अपने पशु को ताजा साफ सुथरा पानी पिलाना, ना कि भैया आजकल देखो सभी के पास टैंक रखें छतों पर, भाई टैंक का पानी निकाल कर अपने पशु को नहीं पिलाना है। क्योंकि भाई वो देखते हैं हम कि गर्म हो जा है गर्मियों में, तो भाई वो नहीं पिलाना, आप सीधे नल से या भैया सीधा समरसेबिल चला कर अपने पशु को ताजा पानी पिलावा, ना कि भैया वो टैंक का पानी पिलाना। और एक चीज का ध्यान हमारे किसान भाई क्या काम करें कि भैया पशुओं को, भैंसों के पशु को तो नहवा ले हैं, और गाय के पशु को नहवाने में थोड़ा सा ये सोचा है ना यार, गाय के पशु को गर्मी नहीं लगती, भाई ऐसा कुछ नहीं है, गाय के पशु को भैंस के पशु से भी ज्यादा गर्मी लगे है। तो भाई अपने गाय के पशु को भी नहवाने में एहतियाती बरतें, और दिन में चाहे गाय का पशु हो या भैंस का पशु हो, भाई दोनों को आप दिन में कम से कम 2 बार आवश्यक रूप से नहलाएं। तो भाई आज एक ऐसी ही जानकारी हम किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए भी लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है लू में पशुओं की देखभाल, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रजनीश, जो कि भैया राज्य के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं नगीना में। और भाई आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से की गई ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन करते हैं, क्योंकि हमारा खेती किसानी का जो काम है वो बिना पशुओं के अधूरा है, यानी कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। और हम जो हमारे पशु होते हैं उनकी देखभाल भी हमारे किसान भाई अच्छी तरह से करते हैं, और गर्मी का मौसम भी चल रहा है। आज हम पहुंचे राजकीय पशु चिकित्सालय नगीना जनपद बिजनौर में, और आज हमने बात की पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश से, और डॉक्टर साहब से हमने जाना लू में पशुओं की देखभाल के संबंध में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जितेंद्र जी, और मैं डॉक्टर रजनीश, मैं अपने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, कार्यक्रम में अच्छी अच्छी जानकारियां, नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसा जितेंद्र जी ने आपको बताया कि गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और लू चल रही है
0: जी। तो सर जैसा कि हमारा आज विषय भी है कि लू के संबंध में, लू में पशुओं की देखभाल, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आप यही बताइए कि लू है क्या।
1: लू जो है वो ये उत्तरी भारत का जो गंगा का मैदान है, ये ऊपर का क्षेत्र है, इसमें पश्चिम दिशा से चलने वाली शुष्क गर्म हवाएं हैं
0: जी जी,
1: और ये इतनी शुष्क होती हैं कि जो आर्द्रता है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये ह्यूमिडिटी को बिल्कुल खत्म कर देती है
0: जी सर,
1: और इसकी वजह से सभी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पशुओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, इंसानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है
0: जी,
1: और जो हमारे दूसरे पशु हैं जैसे मुर्गियां हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, कुत्ते हैं, इन सब के ऊपर इनका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे नौजवान साथियों को दी, जो भी पशुपालन करना चाहते हैं या स्वयं भी अपने आप को लू से बचाना चाहते हैं, तो उन सभी को ये पता लग गया कि लू है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा

0: लू के संबंध की बात कर रहे हैं तो लू लगने के मुख्य कारण हमारे पशुओं में हमारे किसान भाई किस तरह से पहचान करें?
1: देखो साहब, लू सबसे पहले तो यह है कि लू लगती क्यों है।
0: जी
1: तो लू लगने का सबसे पहला कारण तो यही है कि हम पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि चूंकि बहुत शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं,
0: जी
1: ये जो पानी है, जो शरीर में पानी है, उसको उड़ा देती हैं, खत्म कर देती हैं।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे पहले तो निर्जलता का जो लक्षण है वो आते हैं, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, पशु बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है,
0: जी
1: खाना पीना कम कर देता है, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
0: जी
1: और मुंह खोल के सांस नहीं ले लगता है, उसको
0: अच्छा
1: सांस आने में दिक्कत आने लगती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि लू लगने पर हमारे किसान भाई किस तरह से अपने पशुओं में पहचान करें कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या क्या लू लगने के कारण हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे लू हमारे पशु को लग गई है या हमारे पशु को लू से हमें बचाना है, तो हमारे किसान भाई लू से बचाव किस तरह से हमारे पशु का कर सकते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पशु जो है सीधे शुष्क हवाओं के संपर्क में ना आए,
0: जी
1: किसी आड़ में रहें, छायादार वृक्ष हों या
0: जी
1: कोई छाया उन्होंने खुद बना रखा हो, शेड हैं जैसे टीन शेड हैं या
0: जी
1: बरामदे हैं, उनमें जानवरों को रखें और उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं। तो
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जैसे गर्म हवाएं जो हैं शरीर में से पानी को भाप बना के उड़ा देती हैं, तो शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है।
0: जी सर
1: तो ऐसी दशा में किसान भाई जैसे हमारे क्षेत्र में करते हैं कि दिन में 2 बार पानी उन्हें पिला देते हैं बाल्टी
0: जी
1: से,
0: जी
1: तो उस परंपरा को थोड़ा सा छोड़ें और पशु के सामने हमेशा पानी की, साफ पानी की उपलब्धता बनाए रखें,
0: बिल्कुल सर
1: ताकि पशु को जब भी आवश्यकता हो वो तुरंत अपनी आवश्यकता अनुसार ठंडा साफ स्वच्छ पानी पी सके।
0: बिल्कुल सर
1: और छायादार वृक्ष के नीचे रहे, और यदि टिन शेड है तो उसके ऊपर, देखिए पीछे आपका गन्ने की पत्ती थी आपके पास में बची हुई या पुआल है बची हुई, तो
0: जी
1: टिन शेड भी चूंकि गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर भी आप जो आपके कृषि अवशेष हैं, बची हुई कड़बी है, पुआल है, इसको आप टिन शेड के ऊपर डाल सकते हैं,
0: जी
1: तो जिससे नीचे का तापमान थोड़ा कम रहे,
0: जी सर
1: उससे भी पशुओं का गर्मी से या लू से बचाव होता है। एक
0: बिल्कुल
1: और अन्य उपाय आप कर सकते हैं कि जो अगर खुला जगह है जैसे बरामदा है या कमरा है, तो उसमें आप टाट की बोरी या
0: जी
1: जूट की बोरी टांग सकते हैं, जिनके ऊपर आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी जी जी
1: कोशिश करें कि पशुओं को दिन में 2 से 3 बार जरूर नहलाएं।
0: बिल्कुल सर
1: हमारे इस पूरे क्षेत्र में लोग गोवंशीय पशुओं को नहीं नहलाते हैं और या कम नहलाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो चूंकि गोवंशीय पशुओं में जो है पसीने की ग्रंथियां बहुत होती हैं, पसीना बहुत आता है,
0: जी
1: तो उनमें पानी की बहुत कमी पड़ती है। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने गायों को, अपने बैलों को, बछड़ों को, बछियों को भी लू से बचाते हुए दिन में कम से कम 2 बार हल्के से ठंडे पानी में, मतलब ज़्यादा ठंडा ना हो,
0: जी
1: जरूर नहलाएं।
0: बिल्कुल
1: और ये 2-3 चीज़ों का जो है किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि पशु जो है उनके लू के प्रकोप से बचे रहें।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को लू से बचाव के संबंध में दी कि किस तरह से वो अपने पशुओं का लू से बचाव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा लू से बचाव की बात हुई, तो लू यदि हमारे पशु को लग गई है तो उसका हमारे किसान भाई किस तरह से उपचार करें या प्राथमिक उपचार करें या निवारण करें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, तो सबसे पहले तो चूंकि शरीर में से पानी की कमी पड़ जाती है, तो
0: जी
1: पानी की कमी होने की वजह से पशु हमारा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है
0: जी जी
1: और वो खाना चारा दाना पकड़ना बिल्कुल बंद कर देता है, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखें उसकी गड़ी गड़ी महसूस होती हैं और वो बिल्कुल जमीन पे ऐसे लेट जाएगा जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो,
0: जी
1: शरीर का ऊपरी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सर
1: तो अगर ये लक्षण पशुपालक भाई को नजर आ रहे हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि भाई मेरा पशु जो है वो गर्मी की चपेट में या लू की चपेट में आ गया है।
0: बिल्कुल सर
1: तो ऐसी दशा में सबसे पहले तो उसे किसी छायेदार जगह में, किसी ठंडी जगह में उसे शिफ्ट करें, वहां पर उस स्थान पर ठंडी और छायादार स्थान पे रखें,
0: जी
1: उसे भरपूर मात्रा में पानी पिलाए
0: जी
1: और पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट जैसे इलेक्ट्राल है या पशुओं के बहुत सारे पाउडर आते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं,
0: जी
1: उन्हें जो है वो पानी में घोल के उसे जरूर पिलाए
0: जी
1: और साथ में उसे वो थोड़ा सा पानी में नमक भी दे सकता है ताकि
0: अच्छा
1: शरीर में सोडियम क्लोराइड का बैलेंस बना रहे।
0: जी
1: और यदि इन जो प्राथमिक उपचार हैं
0: जी
1: इनसे समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हमारे किसान भाइयों को जो अपनी नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां

0: करें, और यदि संपर्क नहीं हो पाता है पशुपालकों का तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घर घर पर एम्बुलेंस के द्वारा भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके लिए किसान भाई जो हैं 1962 को डायल करके भी पशु चिकित्सा की सेवाएं घर पे प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी सर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को पशुपालन के संबंध में दी। पशुपालकों का, हमारे किसान भाइयों को जो भी डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं वो लगभग लगभग अपने पशुओं में वो अपनाएंगे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि गर्मी का मौसम है और आने वाला सीजन बरसात का है, तो हमारे किसान भाई दोनों सीजनों को देखते हुए अपने पशुओं को किस तरह से पशुओं का प्रबंधन करें?
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत चीज जो है प्रश्न आपने किया जितेंद्र जी। देखिए आने वाला जो समय है वो बरसात, गर्मी के बाद में हमारे यहाँ 20 जून के बाद में बरसात शुरू हो जाती है, और बरसात के शुरू होते ही पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां जो हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है, जिनमें गलघोटू है और लंगड़िया बुखार है। तो HS और BQ जिन्हें हम अंग्रेजी में जानते हैं, तो पशुपालकों को चाहिए कि वो भाई अपने पशु चिकित्सालय से, पैरावेट से संपर्क करके पशुओं में HS का टीका जरूर लगवाएं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल HS का टीका हमारे किसान भाई समय से अपने पशुओं में लगाएं। और डॉक्टर साहब, ऐसा HS का टीका लगने में कुछ सावधानी हमारे किसान भाई
0: नहीं,
1: बरतें?
0: ऐसी कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, और सभी पशुओं को ये टीका दिया जा सकता है और बिल्कुल सेफ है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि लोग ये समझते हैं पशुपालक भाई कि भाई टीका लगाने से दूध कम हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा। भाई वो तो लू लगने से पहले ही कम हो गया।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि लू लगने से हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन कुछ कम हो जाता है, तो हमारे किसान भाई अपने पशुओं के खान पान में क्या एहतियाती बरतें हैं या किस तरह से सावधानी बरतें हैं ताकि हमारा जो पशु है उसका दूध घट ना सके?
0: देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पशुओं को साल में 2 बार पेट के कीड़ों की दवाई दें और हरे चारे की उपलब्धता आप सारे साल बनाए रखें। आज के समय में नेपियर, नेपियर बाजरा हाइब्रिड, सॉर्गेज, सॉर्गम, मक्का, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो अलग अलग समय पर आपको हरे चारा उपलब्ध कराती रहती हैं। और जो बिल्कुल गर्मी का सीजन है, अगर हमारे किसान भी नेपियर की जड़ों की रोपाई कर लें तो उनसे भी जो है आपको लू के सीजन शुरू होने से पहले, अप्रैल मई से पहले आपको हरा चारा मिलना शुरू हो जाता है, और उस हरे चारे को आप अपने पशुओं को दे सकते हैं भूसे में मिला के, पुआल में मिला के, ताकि पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, उनकी उत्पादकता में कमी ना।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप हरा चारा अपने पशुओं को खिलाएं और अच्छा दूध उत्पादन पाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है कि हम अपने पशुओं को संतुलित आहार या संतुलित दाना मिश्रण किस प्रकार से खिलाएं ताकि हमारा पशु जो है शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ बना रहे और समय से ज्ञापन हो सके, तो इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप क्या
0: बिल्कुल
1: देंगे?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है ये जानकारी किसान भाइयों को होना। देखिए बाजार में तो संतुलित पशु आहार बने बनाए आते हैं, लेकिन अगर किसान भाई जो अपने पास ही उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का अगर न्याय संगत तरीके से इस्तेमाल करें तो एक बहुत अच्छा जो पशु आहार है वो घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए पशुपालक भाइयों को अगर हम 100 किलो की मात्रा को संदर्भ लें तो उसमें 1/3 मात्रा हम किसी भी अनाज की रखें, जो हमारा गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, जई हो सकती है या मक्का हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र में गेहूं और जौ की उपलब्धता अच्छी है तो वही हम लेते हैं। 1/3 मात्रा जो है वो छिलके की लें, चाहे वो ज्वार चने का लें, चाहे दाल का लें, चाहे गेहूं का चोकर लें, और 1/3 मात्रा खल की रखें, चाहे सरसों की ले लें, और दूध देने वाले पशु हैं तो आप इनोले की खल भी ले सकते हैं, अलसी की भी ले सकते हैं। और इसमें आप 1 किलो साधारण नमक और 2 किलो आप मिनरल मिक्सचर मिलाएं, तो ये पूरे 5 चीजों का आपका जो है एक पूरा सम्मिश्रण हो जाएगा तैयार, और इसको आप अपने पशुओं को पूरे साल भर खिला सकते हैं। ये बाजार में मिलने वाले जो आहार हैं उनसे कीमत में भी कम पड़ता है, और ये उनसे उसकी उत्पादकता और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी इससे ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को संतुलित आहार के संबंध में दी कि यदि हमारे किसान भाई बाजार से खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं तो वो अपने घर पर ही एक संतुलित आहार घर बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, संतुलित आहार तो हमारे किसान भाई बना लेते हैं, कभी कभी हमें देखने में आता है कि हमारा जो पशु है वो संतुलित आहार को जो है बड़े चाव से या अच्छी तरह से खा नहीं रहा है, उसका क्या कारण होता है?
0: देखिए उसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो जो संतुलित आहार में आपने अवयव यूज किया

0: हैं,
1: जी
0: जैसे खल है, चोकर है या गेहूं है,
1: जी
0: तो या तो उनकी जो गुणवत्ता है वो निम्न गुणवत्ता की थे, या उनमें कोई महक आ रही थी, या उनमें फफूंद लगी हुई थी, या आपने देखा हो कि लोग अक्सर ये करते हैं कि जो गेहूं बैठ जाता है या जिसमें सीलन लग जाती है
1: जी
0: उसको पशुओं के लिए पिसवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो वो पशुओं के लिए ना पिसवाएं, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं और उस बहुत तेज महक आती है, तो पशु आहार को पकड़ता नहीं है।
1: जी
0: अगर ये सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं और उसके बाद भी पशु जो है पशु आहार वो नहीं पकड़ रहा है,
1: जी
0: तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा सीरा का घोल या गुड़ का घोल
1: जी
0: भी आप उसमें मिला सकते हैं, ताकि पशुओं की पैलेटिबिलिटी बढ़ जाए और वो पूरे आहार के साथ में जो चारा आपने दिया है उस चारे को भी उसके साथ में खा सके।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि किस तरह से वो अपने संतुलित आहार में सावधानी बरतें और अपने पशुओं को अच्छी तरह से खिलाएं और अच्छा दूध उत्पादन अपने पशुओं से प्राप्त करें। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते और क्या कुछ संदेश या कोई बात हमारे किसान भाइयों को बताने से रह गई है, तो किस तरह की जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: देखिए, अब मेरा अपने सभी किसान पाल पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि सरकार की तरफ से टीकाकरण का कार्यक्रम जो है साल में 2 बार चलाया जाता है।
1: जी
0: खुरपका मुंहपका का टीकाकरण बिल्कुल निशुल्क किया जाता है, एचएस का टीकाकरण बिल्कुल निशुल्क किया जाता है। जो हमारे भाई जो है बकरियां इत्यादि पालते हैं उनमें पीपीआर का टीका, जो हमारे सुकर पालक किसान लोग करते हैं
1: जी
0: तो उनमें जो है स्वाइन फीवर का टीका बिल्कुल सरकार की तरफ से निःशुल्क दिए जाते हैं। और इनके लिए आप अपने जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है उसे संपर्क में रहें
1: जी
0: और अपने सभी पशुओं को साल में 2 बार कीड़ों की दवाई और 2 बार टीकाकरण अवश्य करवाएं,
1: बिल्कुल
0: संतुलित आहार दें, हरा चारा रखें, गर्मी से बचा के रखें और लू के प्रकोप से बचाएं, और समय आने पर जब भी आवश्यकता हो अगर पशु चिकित्सा की सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो
1: जी
0: 1962 पे कॉल जरूर करें और पशु चिकित्सा की सेवाओं का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक उत्पादन वो प्राप्त करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने पशुओं को लू से बचाव के संबंध में बड़ी अच्छी जानकारी दी और आज आपने हमें अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जितेंद्र जी और सभी किसान बालकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भैया, ये जानकारी हमारे किसान भाइयों ने सुनी, वही विषय था लू में पशुओं की देखभाल। भाई डॉक्टर रजनीश ने देखो कितनी अच्छी जानकारी लू के संबंध में कि किस तरह से लू से हमारे किसान भाई अपने पशुओं का बचाव करें, साथ ही साथ भाई पशुओं को क्या क्या अपने आहार में खिलाएं पशुओं को, साथ ही भाई पशुओं को नहलाने के संबंध में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, और भाई जैसा कि आने वाला समय जो है वो बरसात का है, तो भाई बरसात में किस तरह से अपने पशुओं का भैया बीमारियों से बचाव रखें, किस किस चीज़ का टीकाकरण कराएं, भाई पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब ने भैया पशुओं के संबंध में किसान भाइयों को दी। और जो भी हमारे किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे नौजवान साथी पशुपालन करने की सोच रहे हैं, तो भाई उन्हें कहीं ना कहीं इस जानकारी का पशुपालन व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा और भाई वो इस जानकारी का लाभ उठाकर भैया अपनी आमदनी में 4 चांद लगा सकते हैं। भाई देखो, जब बात आमदनी की होती है और बात लाभ की होती है, तो भाई लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो भाई किसान भाइयों को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं महाभारत के किस्से से यो प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे भाइयों ने ये रागनी सुनी, हो आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। आवाज है भैया सेठपाल सिंह आर्य व साथियों की। और भाई देखो, उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान हमारे किसान भाइयों की उतर गई होगी। भाई हमारा खेती किसानी का जो काम है वो भाई मैनुअल है, और हमारे किसान भाई देखो खेती किसानी का काम करके थक जाहा, और जब भाई थोड़ी सी कानों में संगीत की गूंज पड़ जाहा तो भाई देखो थकान अपने आप ही उतरती चली जाहा। तो भाई अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाई उसे बिल्कुल भी नहीं दे रही है। लेकिन भाई जो हमारा खेती किसानी का काम है वो हम कितने भी भैया कृषि यंत्रीकरण पा गए हों, कितने ही वैज्ञानिक युग हो गया हो, लेकिन भाई फिर भी मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके पास भैया सभी के आजकल देखो बड़े फोन हैं, तो आप भैया मौसम से अपडेट रहिए, मौसम को देखते रहिए कि भाई कब बारिश है, कब मौसम में गर्मी है, तो भाई उसी हिसाब से अपनी फसलों की भैया सिंचाई करें, साथ ही साथ उर्वरक प्रबंधन करें। यदि भैया किसी कीट की भैया रोकथाम के लिए किसी भी दवाई का या किसी चीज़ का स्प्रे करना है तो भैया उसका भी भैया मौसम को देखते हुए अपने सारे काम निपटावा। और भाई अब देखो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467633। भाई इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि भाई आपकी जो चिट्ठी पत्री होती है उन्हीं के आधार पर हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो भाई एक हमारा मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर भी है जिसे आप नोट कर लें, भाई नंबर है 9457072888। भाई इसमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी आपकी भैया समस्या है या भाई आप हमारे कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो भाई आप हमें लिख भेजिए। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कहानी हौसलों की उड़ान। कहानीकार हैं विभा पांडे।
1: हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान कभी कम नहीं होती, यह एक बहुत अच्छा प्रेरणादायक वाक्य है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने हौसलों को कम नहीं होने देते और हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वे कभी भी नाकामयाब नहीं होते और उन्हें सफलता जरूर हासिल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के हौसलों को बढ़ाने की बजाय उनके हौसलों को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहले बात आती है लड़कियों की। लोग सोचते हैं कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, वे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कहकर वे लड़कियों का हौसला कम नहीं

और माता एक गृहिणी थी। प्रथा हमेशा से ही अपने पिता की तरह पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहती थी, परंतु उसकी छोटी बहन युक्ति, जो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती थी, परंतु पढ़ाई से ज़्यादा उसकी रुचि खेलने में थी और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो बड़ा होकर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती थी। और वो हमेशा अपने पापा से जिद किया करती थी कि वो उसे फुटबॉल खेलने दें, परंतु उसके पापा उसे ऐसा करने के लिए मना करते थे और उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहा करते थे और वे हमेशा कहते थे कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती और ये लड़कियों का खेल नहीं है। इस तरह से युक्ति हमेशा अपने पापा से नाराज रहा करती थी। युक्ति की माँ और प्रथा उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे और वे उसे छुपकर खेलने के लिए भेज दिया करती थी और उसके पिता से हमेशा कह देती थी कि वो पढ़ रही है। क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी तो उसके पिता को कभी भी पता नहीं चल पाता था। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा और कुछ समय बाद प्रथा, जो कि पढ़ने की बहुत शौकीन थी, वो पढ़ाई में आगे निकलने लगी और युक्ति, जो कि फुटबॉल में अच्छी थी, उसमें माहिर होने लगी। पढ़ाई में भी अच्छी होने की वजह से उसने भी अपनी पढ़ाई अच्छे अंकों से पास कर ली, जिससे उसके पिता को उसके फुटबॉल खेलने के बारे में कभी भी पता नहीं चल सका। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन दोनों के पिता ने उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। युक्ति कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली तो गई, परंतु उसका वहाँ मन नहीं लगता था क्योंकि उसे चारों तरफ फुटबॉल ही फुटबॉल दिखाई देती थी। और फिर एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि वो ये सब छोड़ दे और फुटबॉल खेलना शुरू कर दे। उसने अपने पिता को बिना बताए अपनी माँ की बात मान ली और फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इसके लिए उसकी माँ ने उसका पूरा सहयोग किया। फुटबॉल खेलते खेलते युक्ति ने एक के बाद एक कई ट्रॉफियां जीती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन प्रथा, जो हमेशा से ही इंजीनियर बनना चाहती थी, अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर पूरा कर रही थी। इधर युक्ति एक बार एक मैच में बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। युक्ति की माँ को उसके पिता को सब कुछ बताना पड़ा। युक्ति के पिता ये सब जानकर बहुत ही नाराज हुए और वे युक्ति के पास जाकर कहने लगे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैंने मना किया था कि ये लड़कियों का खेल नहीं और तुम मुझे बिना बताए खेलने लगी। ऐसा कहकर वे युक्ति से नाराज होकर वहां से चले गए। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वो अब कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगी। युक्ति ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। उसने ये सब सुनकर सोचा कि उसने अपने पिता का दिल दुखाया है और वह फुटबॉल के एक महत्वपूर्ण मैच का हिस्सा भी नहीं बन पाई, जो कि उसका सपना था। परंतु उसके दिमाग में पिता की एक बात बार बार घूम रही थी कि फुटबॉल खेलना लड़कियों का खेल नहीं है। उसने सोचा कि उसे अपने पिता की इस बात को किसी भी तरीके से गलत साबित करना होगा। युक्ति कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही, परंतु कुछ समय बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि यदि तुम अपने पिता की बात को गलत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें उठना होगा। उधर युक्ति की बड़ी बहन, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसने भी फोन करके उसको हौसला दिया और हिम्मत बंधाई। हौसला दिया और हिम्मत करने को कहा और फिर से उठ खड़ी होने के लिए प्रेरित किया। माँ और अपनी बड़ी बहन की सपोर्ट पाकर युक्ति को फिर से हिम्मत आई और उसने अपने शरीर पर लगी सारी पट्टियां खोल दीं और उठ खड़ी हुई। कुछ महीने के प्रयास करने के बाद फिर से खड़ी हो गई और इस तरह प्रयास करते करते वह बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में युक्ति

0: अपने हर गेम में हारती रही, परंतु उसने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया और कोशिश करते करते उसने धीरे धीरे सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा लिया और वह देखते ही देखते एक बहुत बड़ी फुटबॉल प्लेयर बन गई और युक्ति की बड़ी बहन प्रथा एक बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई। युक्ति ने अपने पिता की ये बात गलत साबित कर दी कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती। अपनी बेटियों की इस कामयाबी को देखकर युक्ति के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने युक्ति को महिला फुटबॉल टीम का कोच बनने के लिए प्रोत्साहित किया और कुछ समय बाद युक्ति लड़कियों की टीम की कोच बन गई और इस तरह युक्ति ने अपने हौसलों की उड़ान को कभी कम नहीं होने दिया और इस वाक्य को सच साबित कर दिया कि हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती। इस कहानी की शिक्षा यह है कि जिस तरह युक्ति ने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया और कोशिश करते हुए हर मुश्किल का सामना किया, फिर आगे बढ़ती रही और कामयाबी की उड़ान भरी, उसी तरह से हमें भी अपनी परिस्थितियों से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हौसलों की उड़ान कभी भी नाकामयाब नहीं होती और लगातार प्रयास करते रहने से हमें एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। और इस कहानी से उन लोगों को भी शिक्षा मिलती है जो कि युक्ति के पिता की तरह ये सोच रखते हैं कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती और खेल लड़कियों के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आज के युग में लड़कियों को लड़कों से किसी भी कार्य में कम नहीं समझना चाहिए। अब हर क्षेत्र में लड़कियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है और हमेशा अपनी सहन शक्ति और साहस का परिचय दिया है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कहानी हौसलों की उड़ान। कहानीकार थी विभा पांडे। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म मोहरा से। गायक स्वर हैं पंकज उदास और साधना सरगम के। शब्द रचना की है इंदिवर ने और धुन तैयार की है विजू शाह ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म क्रांति का एक गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। शब्द रचना संतोष आनंद ने की है और संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म ही रांझा का गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और गीत को लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे अजय जोशी की गाई गजलों का। कार्यक्रम अदबी दुनिया के अंतर्गत 7:50 पर आज के कलामी शायर होंगे दीपक अरोड़ा। नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी आज रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी, और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे डॉक्टर अनिल चौधरी का काव्य पाठ सुबह 6:45 पर। कल सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा संगीत सुनिए और स्वस्थ रहिए। कल सुबह 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा सघन कृषि आज की आवश्यकता। मनोरंजन और जानकारियों से ओतप्रोत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे गीता पंत के गाए रुहेल खंडी लोकगीत बात आसपास की। आप सुनेंगे

0: भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे कल सुबह 10 बजे। कल दिन में 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित मणिराम का गाया राग पटदीप की। विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध होगा। तबले पर संगत करेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर होंगे सुल्तान खान। कार्यक्रम परिवार जगत का प्रसारण होगा दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता जिसका विषय होगा मॉडर्न करियर में टेक्नोलॉजी की भूमिका। इस विषय पर डॉक्टर रेशु शर्मा से ज्योतिपाल की बातचीत। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे वंशिका सोती के गाए भजनों का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।
1: शाम के हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडलेक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के

0: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
4: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ट्राई साइकिल और

0: ने सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: Hey girls!
3: Hi! Congratulations!
2: आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय जोशी की गाई गजलें।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अजय जोशी की गाई गजलें। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये एक और गजल।

0: अजय जोशी की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अदबी दुनिया। आज के इस कार्यक्रम में कलाम शायर हैं दीपक अरोड़ा।
1: आपके सामने अपनी कुछ कविता और गजल लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरी पहली कविता है वीर रस की। होने को थी रक्त रंजित, अब धरा कुछ क्षण में ही। होने को थी रक्त रंजित, अब धरा कुछ क्षण में ही। युद्ध भूमि में बहुत साहस से सेना थी खड़ी। युद्ध भूमि में बहुत साहस से सेना थी खड़ी। खौलता जाता लहू अब आर हो या पार हो। खौलता जाता लहू अब आर हो या पार हो। जो भी हो परिणाम पीछे अब हटेंगे हम नहीं। जो भी हो परिणाम पीछे अब हटेंगे हम नहीं। बस मिले संकेत और फिर, बस मिले संकेत और फिर युद्ध का प्रारंभ हो। तान डालें तीर और चमकेगी अब तलवार भी। तान डालें तीर और चमकेगी अब तलवार भी। जितने भी मन में गड़े थे घाव अत्याचार के। जितने भी मन में गड़े थे घाव अत्याचार के। पी लहू को शांत होगी आग अब प्रतिशोध की। पी लहू को शांत होगी आग अब प्रतिशोध की। और तभी संकेत दोनों, और तभी संकेत दोनों ओर से जब मिल गया। और तभी संकेत दोनों ओर से जब मिल गया। थी यही शुरुआत अब एक युद्ध और विध्वंस की। थी यही शुरुआत अब एक युद्ध और विध्वंस की। जो भी आते जा रहे थे सामने तलवार के। जो भी आते जा रहे थे सामने तलवार के। कटके गिरते जा रहे थे देह भी और प्राण भी। कटके गिरते जा रहे थे देह भी और प्राण भी। अनगिनत रिश्तों के शव बिखरे पड़े कुरुक्षेत्र में। अनगिनत रिश्तों के शव बिखरे पड़े कुरुक्षेत्र में। पर अभी अग्नि कहाँ होनी थी ठंडी युद्ध की। पर अभी अग्नि कहाँ होनी थी ठंडी युद्ध की। वर्ष 16 का वो बालक भी तो अपना वंश है। वर्ष 16 का वो बालक भी तो अपना वंश है। जिस

को मारे घेर कर अपने सगे संबंध ही, जिसको मारे घेर कर अपने सगे संबंध ही। हद वहां तक भी हुई जब अश्वत्थामा क्रूर ने, हद वहां तक भी हुई जब अश्वत्थामा क्रूर ने मार डाले पांच बालक आग में प्रतिशोध की, मार डाले पांच बालक आग में प्रतिशोध की। पर यही वो क्षण भी था जब स्तब्ध दुर्योधन भी था। अत्याचारी तुमने तो कर दी है पीड़ी नाश ही, अत्याचारी तुमने तो कर दी है पीड़ी नाश ही। हम तो सब मर जाएंगे इस युद्ध भूमि में मगर, हम तो सब मर जाएंगे इस युद्ध भूमि में मगर, नाम लेवा अब कोई जीवित बचेगा ही नहीं, नाम लेवा अब कोई जीवित बचेगा ही नहीं। केश भी अब रक्त से धोकर बंधे और भीम ने, केश भी अब रक्त से धोकर बंधे और भीम ने मार दुशासन को रख ली लाज एक सौगंध की, मार दुशासन को रख ली लाज एक सौगंध की। युद्ध की अग्नि में रह पाया ना कोई शेष अब, युद्ध की अग्नि में रह पाया ना कोई शेष अब। राजधानी मिल गई पर खो गए रिश्ते सभी, राजधानी मिल गई पर खो गए रिश्ते सभी। देह की शक्ति गई और दंभ मन का मिट गया, देह की शक्ति गई और दंभ मन का मिट गया। बस लहू हर और था और मौन थी धरती बनी, बस लहू हर और था और मौन थी धरती बनी। अनगिनत सब प्राण न्योछावर किए जिसके लिए, अनगिनत सब प्राण न्योछावर किए जिसके लिए। अब तो सब कुछ मिल गया पर क्या ये सच में जीत थी, अब तो सब कुछ मिल गया पर क्या ये सच में जीत थी, पर क्या ये सच में जीत थी। आपके सामने एक और गजल प्रस्तुत करता हूं। गम की चाहे जितनी भी मियाद हो, गम की चाहे जितनी भी मियाद हो, बाद लेकिन हर खुशी आबाद हो, बाद लेकिन हर खुशी आबाद हो। अगला शेर देखिएगा दोस्तों। आंधियों के बाद महकेंगी फजा, आंधियों के बाद महकेंगी फजा, आस की कायम यही बुनियाद हो, आस की कायम यही बुनियाद हो। मेरे इस अगले शेर को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा दोस्तों। आज तन्हाई में मरता हर कोई, आज तन्हाई में मरता हर कोई, इसकी भी कोई दवा इजाद हो, इसकी भी कोई दवा इजाद हो। अगला शेर देखिएगा दोस्तों। गिर के उठना भी लगे आसान जब, गिर के उठना भी लगे आसान जब, हाथ थामे आपका उस्ताद हो, हाथ थामे आपका उस्ताद हो। क्या बिगाड़े गा कोई उस शख्स का, क्या बिगाड़े गा कोई उस शख्स का, जिसकी हिम्मत हौसला फौलाद हो, जिसकी हिम्मत हौसला फौलाद हो। अगला शेर देखिएगा दोस्तों। गम की बस्ती में खुशी की लौ जले, गम की बस्ती में खुशी की लौ जले, जीस्त सबकी ही खुदा नौशाद हो, जीस्त सबकी ही खुदा खुदा नौशाद हो। एक शेर और देखिएगा दोस्तों। इल्म और एहसास से रोशन रहे, इल्म और एहसास से रोशन रहे, सबको ऐसी नेक दिल औलाद हो, सबको ऐसी नेक दिल औलाद हो। मकताब के सामने रखता हूं, इसे भी अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। जो अंधेरों से न समझौता करे, जो अंधेरों से न समझौता करे, एक दीपक और यहां आबाद हो, एक दीपक और यहां आबाद हो। एक आखिरी गजल और आपके सामने हाजिर करता हूं, इसको भी अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा दोस्तों। आप हमको एक दफा तो मुस्कुरा कर देखिए, आप हमको एक दफा तो मुस्कुरा कर देखिए, जान भी दे देंगे जाना आजमा कर देखिए, जान भी दे देंगे जाना आजमा कर देखिए।

0: शेर देखिएगा दोस्तों, आपकी आंखें समंदर हैं, आपकी आंखें समंदर हैं, डुबो न दे हमें। आपकी आंखें समंदर हैं, डुबो न दे हमें। एक गुजारिश है जरा पलकें झुकाकर देखिए, एक गुजारिश है जरा पलकें झुकाकर देखिए। अगला शेर देखिएगा दोस्तों, अब कोई शिकवा शिकायत, अब कोई शिकवा शिकायत आपसे हमको नहीं, अब कोई शिकवा शिकायत आपसे हमको नहीं। क्यों है बदले दिल के ये जज्बात आकर देखिए, क्यों है बदले दिल के ये जज्बात आकर देखिए। आखिरी शेर को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा दोस्तों, दिल परेशान है, दिल परेशान है हमारा, क्या कहे दीपक भला। दिल परेशान है हमारा, क्या कहे दीपक भला। आप तो अपने हैं, आप तो अपने हैं, अंदाजा लगाकर देखिए, आप तो अपने हैं, अंदाजा लगाकर देखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अदबी दुनिया के अंतर्गत आज के कलाम शायर दीपक अरोड़ा को। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। पेश है फिल्म दिलवाले का ये गीत, जिसे आवाज दी है कुमार शानू ने, गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: 1942 अ लव स्टोरी, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू ने, शब्द रचना की है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। आइए अब सुनते हैं फिल्म क्योंकि का ये गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत को शब्दबद्ध किया है समीर ने और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

जब वी मेट, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने, गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म करीब का ये गीत, जिसे स्वर दिया है कुमार शानू और संजीवनी ने, शब्द रचना की है राहत इंदौरी ने और धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म मन का ये गीत, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म अभिमान के कुछ नगमे।

श्रोताओं, फिल्म अभिमान 1973 की हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्मों में से एक है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म पति पत्नी के रिश्ते, अहंकार और कलात्मक प्रतिस्पर्धा की कहानी है।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

0: कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत श्रोताओं आज आपने सुने फिल्म अभिमान के कुछ नगमे, जिन्हें आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मनहर उदास ने। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा

0: और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही।

का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत

0: में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के दो ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।

0: है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 70वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि यह तहरीक बन गई है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियोंग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सयाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है। और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं

0: ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था, तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 24 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है, या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats.
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुँचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों

0: शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
1: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई, बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी, लेकिन हाँ उस समय ईवीएम नहीं होती थी, तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई, तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे, क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा, पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
2: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
0: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
2: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
0: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहाँ एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियाँ हर पीढ़ी तक पहुँचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम, आज भी हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार से मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पे बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
0: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी हेडलाइन 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के तखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल

0: तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
2: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है। लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
0: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
1: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
0: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी, और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम

0: एशिया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायोलिन पर Sri Saket Pantula.
1: Sri M.S.N. Murthy's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M.S.N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharyulu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.

0: विद्वान श्री MSN मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री MSN मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापु तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.